जाने जा ढूंढता तू ओ मेरे दिल के चैन, रोमांस सो क्लासिक, इवन ऑटो ट्यून टेक्स नोट्स. लव मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Burka, burka. Nabiyat wala burka. Mirchi burka.
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी, हेलो।
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है, सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाते हैं, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 35/14 फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनशाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है।
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
3: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
2: आपसे डिटेल मांगने जा रहे हो, ठीक करने के लिए डिटेल।
3: सुमन जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: क्या
3: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर मेरा मतलब है, अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं,
3: दोबारा कॉल करेंगे। आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: इनएफिशिएंट,
7: वेरी कॉम्प्लेक्स,
6: क्लमजी और
7: कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन।
6: डिसजॉइंटेड सॉफ्टवेयर को यूज करना उतना इजी नहीं जितना आप समझ रहे हैं। टूटे फूटे सॉफ्टवेयर से छुटकारा पाओ, अपने बिजनेस के लिए जोहो वन ले आओ। जोहो वन इज एन ऑल इन वन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सुइट जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। यस, यू हर्ड दैट राइट, यू कैन रन योर एंटायर बिजनेस, सेल्स मार्केटिंग से लेके कस्टमर सपोर्ट, अकाउंटिंग, ऑपरेशंस या एचआर। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, जोहो वन। गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/1।
8: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्केटवे, आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरु।
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
11: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
11: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
13: Ladies and gentlemen.

बाहर धूप फुल एटीट्यूड दिखा रहा है, लेकिन हमारा प्लेलिस्ट हॉट भी कूल भी, सर्दी गर्मी एक साथ। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। वेलकम बैक पीप्स।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot. Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin. अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com. बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है. फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत है, पर बच्चन एक ही होता है.
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है.
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट
4: मिर्ची, फ्रेश माल.
0: ड्रीमी वाइब और रोमांटिक फील के साथ सुनो शांत मेरा दिल.

0: इस गाने को गाया है फहीम अब्दुल्ला ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म चांद मेरा दिल से सुनते रहिए चांद मेरा दिल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Rabana. Burga, burga. Navid wala burga. Mirchi burga.
2: हेलो हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
3: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
2: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
3: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
2: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
3: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
2: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
3: बोलो।
2: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
3: कौन सा?
2: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
3: कच्चा? अच्छा।
2: हाँ, तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
3: कच्चे तेल से गाड़ी चलाऊं?
2: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
3: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
2: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
3: कुकर? हाँ कुकर तो है।
2: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
3: अच्छा।
2: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
3: सोडा,
2: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
3: लहसुन? यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना, खाना बना रहा है?
2: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
3: मतलब उसको पकाऊं?
2: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
3: कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा, ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
2: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है।
3: नहीं नहीं कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
2: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
3: चल जाएगी?
2: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
3: अबे कौन बोल रहा तू?
2: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है, घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
3: अरे यार ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग 0 क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
6: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे।
7: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा।
8: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
5: अगर आप इनमें से नहीं है तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One इज एन ऑल इन वन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सुइट, जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। यस योर एंटायर बिजनेस, Zoho One इज इजी टू यूज, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One। गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/one।
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
9: अब मिर्ची खा।
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
12: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो
11: ऑन अ राइड।
0: क्लब मिर्ची।

पार्टी रूल सिंपल है बॉस, अगर गर्मी नहीं लग रही है तो डांस करो, हीट योर बॉडी, और अगर गर्मी लग रही है तो भी डांस करो। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका एक साथ, लेट्स

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो
4: ऑन अ राइड
6: क्लब मिर्ची।

बॉस अगर गर्मी नहीं लग रही है तो डांस करो, हीट योर बॉडी, और अगर गर्मी लग रही है तो भी डांस करो। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका एक साथ, लेट्स गो।

आज रात कैलोरीज काउंट मत करो यार, बस बीट्स काउंट करो. डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका एक साथ. इफ यू लाइक व्हाट डीजे रिचर्ड डज विद म्यूजिक, फॉलो डीजे रिचर्ड ऑफिशियल.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Gabana. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: Hello? Hello?
3: Sir, very good evening, man. Bank support.
2: हाँ बोलिए
3: सर. I'm so sorry सर, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
2: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं क्या बात
3: है सर, I'm so sorry, पूरा बताइए
2: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
3: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
2: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
3: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
2: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
3: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
2: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
3: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
2: पागल पागल है,
3: अब तो देने पड़ेंगे सर.
2: हेलो.
3: अब तो फंस गए देने पड़ेंगे.
2: कौन बोल रहा है? विपिन?
3: नहीं सर, अब तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
2: अब
3: तो फंस गए सर.
2: हेलो
4: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ सर. आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
2: उसके पैसे को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
4: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
2: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
4: जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: It's 10 o'clock. Mirchi time check.
6: Brought to you by RK Jewels. RK Jewels, New Jersey's favorite jewelers. RK Jewels, best quality, best price.
5: Batting to kaafi saare karte hain. Virat ek hi hota hai.
7: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
5: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
8: Isse apni jeb mein rakh le Peter. Ab ye taala main teri jeb se chaabi nikal kar hi kholunga.
5: Moral of the story? नंबर वन सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है. जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
1: Club Mirchi.

ऑफिशियल टेम्परेचर 40 हो या 45 डिग्रीज, क्लब मिर्ची का मूड साइंटिफिक कैलकुलेशन के बाहर है कि नहीं? क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयंतिका.

एक्सक्यूजेस, दोनों का लेवल हर साल अनएक्सपेक्टेडली बढ़ ही जाता है क्लब मिर्ची पे. हॉटनेस ज्यादा और पेशेंस कम. लेट्स गो.

एनर्जी भी हाई थी और टेम्परेचर तो पूछो ही मत। पार्टी खत्म हो सकती है लेकिन वाइब का आफ्टर इफेक्ट वो तो चलेगा सुबह तक, है कि नहीं। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे यार डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका एक साथ क्लब मिर्ची पे।

0: भाई इतनी गर्मी है, टेम्परेचर ऑलरेडी हाई चल रहा है, ऊपर से एंट्री मार रही है क्लब मिर्ची। हेलो एंड वेलकम टू द कूलेस्ट पार्टी डेस्टिनेशन, दैट्स मिर्ची एंड दिस इज डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयंतिका सेटिंग द हॉटनेस लेवल टू अ डिफरेंट हाई। एसी काम करना बंद कर दे लेकिन क्लब मिर्ची काम करना कभी बंद नहीं करेगी। पार्टी मूड चालू करते हैं फुल पावर पे। Welcome to Club Mirchi and officially summer se bhi ye hai zyada hot. Let's go.
1: DJ Richard, you are not ready for this. Nah, David.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iskabana, uskabana, sakabana. Kabana. Burka, burka. La virtua la burka. Mirchi, burka.
3: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
4: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
3: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
4: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
3: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
4: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
3: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात अपने तक ही रखना।
4: बोलो।
3: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
4: कौन सा?
3: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
4: अच्छा अच्छा।
3: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
4: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
3: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
4: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
3: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
4: कुकर? हाँ कुकर तो है।
3: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
4: अच्छा।
3: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
4: सोडा,
3: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
4: लहसुन? यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना, खाना बना रहा है?
3: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
4: मतलब उसको पकाऊं?
3: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
4: कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा, ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
3: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है।
4: नहीं नहीं कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
3: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
4: चल जाएगी?
3: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
4: अबे कौन बोल रहा तू?
3: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है, घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
4: जरा ये भी ये बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। ए पगला,
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
9: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो
8: ऑन अ राइड,
0: क्लब मिर्ची।

मिर्ची पर डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योंतिका. दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर. इतनी गर्मी है कि लग रहा है संडे ओवर एक्टिंग कर रहा है. ऊपर से क्लब मिर्ची का टेम्परेचर अलग ही चल रहा है, तो इसी को बढ़ाते हैं. चलते हैं दूसरे गाने की तरफ.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा, ओनली ऑन 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2. इट्स हॉट,
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो,

वेलकम बैक वंस अगेन डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका एक साथ। दो तरह के लोग होते हैं समर में, एक एसी के सामने बैठे होते हैं और दूसरे क्लब मिर्ची के स्पीकर के सामने हेड बैंग कर रहे हैं। विच टाइप आर यू? आई एम श्योर सेकंड।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा.
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

वेलकम बैक डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका एक साथ। वेदर ऐप बोल रहा है कि हीट वेव और हम बोल रहे हैं कि बीट वेव। इधर बीपीएम भी टेम्परेचर से ज्यादा है बॉस। क्लब मिर्ची रेस विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका। चले फिर।

वेलकम बैक डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका एक साथ वेदर ऐप बोल रहा है कि हीट वेव और हम बोल रहे वेलकम बैक डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका एक साथ वेदर ऐप बोल रहा है कि हीट वेव और हम बोल रहे कि

जा ढूंढता तू ओ मेरे दिल के चैन, रोमांस सो क्लासिक, इवन ऑटो ट्यून टेक्स नोट्स. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: सुमन जी, गुड इवनिंग. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ. आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी.
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ.
2: हाँ जी, हेलो.
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है.
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है. सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा. दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाते हैं तो स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें.
3: वो सारी चीजें हो जाएगी. आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3K 35/14A फर्स्ट फ्लोर नगर. तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा.
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें. सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको.
2: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म.
2: मेरा सनसाइन कैंसर है. प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है.
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है.
3: मैडम ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए.
2: बी पॉजिटिव. दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं.
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा. ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता
3: तो
2: दो.
3: तो मैं आपको, अरे मैडम
2: आपसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए. डिटेल
3: सुमन जी, आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: क्या
3: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है. आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो
2: मेरा.
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है. दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया. रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है. आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं.
3: दोबारा कॉल करेंगे. आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं. मैं अभी आपको कॉल बैक.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट
4: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
5: Ladies and gentlemen.

वेलकम बैक वंस अगेन डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका एक साथ। दो तरह के लोग होते हैं समर में, एक एसी के सामने बैठे होते हैं और दूसरे क्लब मिर्ची के स्पीकर के सामने हेड बैंग कर रहे हैं। विच टाइप आर यू? आई एम श्योर सेकंड।

बाहर धूप फुल एटीट्यूड दिखा रहा है, लेकिन हमारा प्लेलिस्ट हॉट भी कूल भी, सर्दी गर्मी एक साथ। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। वेलकम बैक पीप्स।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा.
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो
3: ऑन अ राइड.
0: क्लब मिर्ची.

एक्सक्यूजेस, दोनों का लेवल हर साल अनएक्सपेक्टेडली बढ़ ही जाता है क्लब मिर्ची पे. हॉटनेस ज्यादा और पेशेंस कम. लेट्स

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La vispa, la burga. Mirchi, burga.
2: Hello? Hello?
3: Sir, very good evening, man. Bank support.
2: हाँ बोलिए
3: सर. I'm so sorry सर, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
2: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं, क्या
3: बात है सर. I'm so sorry, पूरा बताइए
2: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
3: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
2: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
3: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
2: नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
3: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
2: नहीं, मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
3: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
2: पागल पागल है,
3: अब तो देने पड़ेंगे सर.
2: हेलो.
3: अब तो फंस गए देने पड़ेंगे.
2: कौन बोल रहा है? विपिन.
3: नहीं सर, तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
2: अब
3: तो फंस गए सर.
2: हेलो
3: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ सर. आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
2: उसके पैसों को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
3: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
2: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
3: जी. अरे सर, रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर. मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. ए पगला,
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा.
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
7: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो
6: ऑन अ राइड.
0: Mirchi.

पार्टी रूल सिंपल है बॉस, अगर गर्मी नहीं लग रही है तो डांस करो, हीट योर बॉडी, और अगर गर्मी लग रही है तो भी डांस करो। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका एक साथ, लेट्स

0: Hot Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन,

अब इतनी गर्मी है कि आइसक्रीम भी पिघलते पिघलते बोल रहा है कि बॉस आज मुश्किल है, लेकिन हम यहाँ पे पार्टी करना कभी नहीं छोड़ते। इस वीकेंड पे भी क्लब मिर्ची जा रही है।

पास अगर गर्मी नहीं लग रही है तो डांस करो, हीट योर बॉडी, और अगर गर्मी लग रही है तो भी डांस करो। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका एक साथ, लेट्स गो।

आज रात कैलोरीज काउंट मत करो यार, बस बीट्स काउंट करो. डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका एक साथ. इफ यू लाइक व्हाट डीजे रिचर्ड डज विद म्यूजिक, फॉलो डीजे रिचर्ड ऑफिशियल.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
3: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
2: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
3: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
2: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
3: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
2: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
3: बोलो।
2: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
3: कौन सा?
2: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
3: अच्छा अच्छा।
2: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
3: कच्चे तेल से गाड़ी चलाऊं?
2: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
3: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
2: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
3: कुकर? हाँ कुकर तो है।
2: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
3: अच्छा।
2: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
3: सोडा,
2: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
3: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना खाना बना रहा है?
2: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
3: मतलब उसको पकाऊं?
2: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
3: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क? कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
2: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
3: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
2: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
3: चल जाएगी?
2: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
3: अबे कौन बोल रहा है तू?
2: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
3: अरे यार जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। ये पक्का
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
7: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो।

ऑफिशियल टेम्परेचर 40 हो या 45 डिग्रीज, क्लब मिर्ची का मूड साइंटिफिक कैलकुलेशन के बाहर है कि नहीं? क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयंतिका.

0: इस गाने को गाया है फहीम अब्दुल्ला ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म चांद मेरा दिल से सुनते रहिए चांद मेरा दिल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।

एक्सक्यूजेस दोनों का लेवल हर साल अनएक्सपेक्टेडली बढ़ ही जाता है क्लब मिर्ची पे. हॉटनेस ज्यादा और पेशेंस कम. लेट्स गो.

रायता एनर्जी भी हाई थी और टेम्परेचर तो पूछो ही मत। पार्टी खत्म हो सकती है लेकिन वाइब का आफ्टर इफेक्ट वो तो चलेगा सुबह तक, है कि नहीं। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे यार, डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका एक साथ क्लब मिर्ची पे लौटेंगे।

0: Mirchi.
1: Iscabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtual la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेन करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी, हेलो।
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3rd K 35/14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनसाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला
3: है। वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
3: तो मैं आपको, अरे मैडम,
2: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल।
3: सुमन जी, आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: यार
3: नहीं तो मैं, अरे मैडम, आप मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर मेरा मतलब है, अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं,
3: दोबारा कॉल करेंगे। आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
6: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
5: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. Hello? Hello?
2: Sir, very good evening, man. Bank support.
1: हाँ बोलिए
2: सर. I'm so sorry सर, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया?
2: सर आप तो सर पूरा बताइए
1: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
2: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
2: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
2: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
1: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
2: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
1: पागल पागल है,
2: अब तो देने पड़ेंगे सर.
1: हेलो.
2: अब तो फंस गए देने पड़ेंगे.
1: कौन बोल रहा है? विपिन?
2: नहीं सर, सोचा तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
1: अब
2: तो फंस गए सर.
1: हेलो.
3: सर आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
1: उसके पैसे को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
3: नहीं सर वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
1: मतलब ये पक्की बात है आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
3: जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा.
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: इस गाने को गाया है राघव चैतन्य और जानिता गांधी ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। चांद मेरा दिल मूवी से सुनिए खासियत, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: समय बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

आर के जूल्स मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।

0: Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: पेरेंट्स और टीचर्स का रोल बच्चों की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वही उनकी सोच, कॉन्फिडेंस और फ्यूचर की फाउंडेशन बनाते हैं। आइए इसे समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, क्या होता है कि वो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं। अब कोई क्लास 4 है, 5 में है, 6 में है, 10 में है, वो कह रहे हैं कि हमें तो पता भी नहीं हमारा हुनर क्या है। और उस जगह पे जहाँ पे शायद हमें लगता है कि हमारे हुनर को निखारा जाएगा, हमें कोचिंग मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगी, उस समय आप अगर कुछ लोगों को ही बढ़ावा देंगे तो हमारा क्या होगा?
4: अगेन, नॉट अ वेरी गुड प्लेस टू बी। सी, इसीलिए तो फिर टीचर्स का रोल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, पेरेंट्स और टीचर्स का। क्योंकि देखो, अभी यहाँ पर वो केवल उनको स्पोर्ट्स से ही अलग नहीं कर रहे हैं, ये कोई डांस या स्पोर्ट्स की बात नहीं है, पर रिजेक्शन।
3: हाँ, बिल्कुल।
4: जो डीपर इम्पैक्ट उस बच्चे के ऊपर पड़ा है, आई एम नॉट गुड
3: इनफ, वो बैठ जाएगा,
4: वो चीज बैठ जाएंगी। दैट इज व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट ना, वो जो फॉर्मेटिव इयर्स होते हैं उस समय पर एम्पावर करना, हर एक की विशेषता को देखना, उसको कार्य में लगाना। इसीलिए जो भी हमारे टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। बाकी सब प्रोफेशंस में यू नॉट क्रिएटिंग फ्यूचर जेनरेशन। टीचर एक इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि आप पूरी एक फ्यूचर जेनरेशन को क्रिएट कर रहे हैं, और आप सिर्फ उनके स्किल टैलेंट को क्रिएट नहीं कर रहे, वो तो वो खुद भी कर लेते हैं। आप उनको कितना इमोशनली स्ट्रांग बना रहे हो, कितना मेंटली स्ट्रांग बना रहे हो, कितने वो ऐसे लोग हैं कि दुनिया में जाकर के किसी भी एडवर्सिटी, किसी भी चैलेंज, किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं, और कहेंगे नहीं, ये उस टीचर ने मुझे उस समय ऐसा कहा। सो लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल्स ऑन द टीचर। बट अगेन आई फील, अगर ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस है तो विक्टिम मोड में जाने के जगह, ठीक है ना, विक्टिम मोड में मैं क्या करूं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी टीचर ऐसा, मेरा स्कूल ऐसा, लुक एट ऑल द अपॉर्चुनिटीज दैट यू हैव। ये हमेशा हमारे साथ होता है, सब कुछ ठीक होगा, जो एक चीज ठीक नहीं होती ना,
3: उसके बारे में ज्यादा ध्यान देते हैं,
4: मन वहीं पर जाता है। कुछ ये ऐसा ही है, वो तो तब से कहते हैं, एडम ईव के समय से पैराडाइज में थे, परफेक्ट था, वेदर परफेक्ट था, सब प्रकार के फ्रूट्स थे, वन फॉरबिडन फ्रूट। तो आपके पास कितनी भी ब्लेसिंग्स हो, बट यू ऑलवेज थिंकिंग अबाउट दैट वन थिंग व्हिच इज नॉट राइट इन योर लाइफ, शिफ्ट।
3: सही बात।
4: प्लीज ब्रिंग दैट शिफ्ट। मे बी देयर इज वन थिंग व्हिच इज नॉट ओके।
3: सही बात।
4: बट मे बी देयर इज सो मेनी अदर थिंग्स। यू हैव गुड सेट ऑफ फ्रेंड्स, कोई और टीचर है जो अच्छा है, कोई और टैलेंट है, यू हैव अ गुड सेट ऑफ पेरेंट्स। आजकल देयर आर लॉट ऑफ चिल्ड्रन हु आर ग्रोइंग अप इन अ वेरी डिसफंक्शनल फैमिली।
3: हां, बिल्कुल सही कह रहे
4: हैं। सो वी कैन काउंट ऑन आवर ब्लेसिंग्स एंड बी ग्रेटफुल।
3: जी, ये
4: सब कुछ परफेक्ट हो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो मूव ऑन, डोंट गेट स्टक।
0: Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: ऋतु है अहमदाबाद से, वो लिखती है कि मैं बार बार अच्छी हैबिट्स बिल्ड करना चाहती हूँ, जैसे सुबह जल्दी उठना या फोन से दूर रहना, लेकिन कुछ ही दिनों में मैं उन्हें छोड़ देती हूँ। लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट कैसे रहा जाए?
3: दृढ़ता की कमी है, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन।
2: जी,
3: सब लोग कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं, स्टार्ट भी करते हैं। 31 दिसंबर को तो ये खास होता है एक न्यू थॉट, एक न्यू रेजोल्यूशन बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि दृढ़ता। तो कोई भी एक अच्छा थॉट लेना कि सुबह जल्दी उठना है, वो बीज है। लेकिन बीज ऐसे ही फलीभूत नहीं होता, उसको रोज पानी डालना पड़ता है। तो अगर आपने कोई थॉट लिया भी है, लेकिन अगर आप डिटर्मिंड नहीं होंगे, डिटर्मिनेशन एक पावर है, तो आप जब उस पावर से वो चीज रोज करेंगे तो ही रिजल्ट निकलेगा। सो इट इज नॉट ओनली अबाउट थिंकिंग, इट्स अबाउट बीइंग डिटर्मिंड, देन पुटिंग इट इनटू प्रैक्टिस, देन फेसिंग द चैलेंजेस जो उस रोड पर आएंगे। समझो, आप रोज सुबह उठने का ही सोचते हैं, ऑफिस में कोई जरूरी प्रोजेक्ट आ जाएगा, कोई और घर में बात आ जाएंगी, पर उस चीज पर, इसलिए कहा ना, डिटर्मिन करना है तो करना ही है, कंसिस्टेंट होना, तो वो चीज हो जाएंगे, दृढ़ता की शक्ति को बढ़ाएं।
2: एक काम और कर सकती हैं ऋतु, मेरी तरफ से सजेशन है, एक पॉडकास्ट है, बहुत खूबसूरत पॉडकास्ट है, जिसका नाम है बियॉन्ड द टू डू लिस्ट। ये अगर आप सुनेंगे तो इससे भी शायद आपको, जैसे कभी कभी सिस्टर कहती हैं कि एक्सटर्नल जब कुछ चीजें आप अच्छी देखती सुनती हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। ये भी कोशिश करिए, शायद आपके काम
3: आ जाए। आपने बहुत अच्छी बात की कि जब भी हम कुछ नया ट्राई करते हैं ना, तो हमें ऐसी चीजें थोड़ा सुनना चाहिए, हम मोटिवेटेड होते हैं। आखिर तो डिटर्मिनेशन की भी जो पावर है वो कहाँ से आएंगे? कोई मोटिवेटिंग फैक्टर तो चाहिए। तो अच्छे फ्रेंड्स होना, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना, ये सारी चीजें हमें वो जैसे एक
2: प्रोत्साहन देती,
3: पुश का काम करती है।
2: बिल्कुल।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: पेरेंट्स अपने बच्चों को सही दिशा तब दिखा पाते हैं जब वो उन्हें सिर्फ जज नहीं समझने की कोशिश भी करते हैं, स्पेशली जब बच्चा परेशान हो। आइए इसे समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: इस पे एक पेरेंट वहाँ बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा, यार कभी कभी मेरे लिए क्या होता है कि ऐसी बातें जब घर पे होती है ना तो मैं उनको अपनी राय देने की कोशिश करता हूँ कि जो आपने भी अभी कहा कि बच्चे पॉजिटिव पे ध्यान दो, कितनी सारी चीजें सही हो रही हैं उस पे ध्यान दो, तो हमें बच्चे चुप करा देते हैं कि मम्मा आई एम फेसिंग इट, नो यू आर नॉट फेसिंग इट, तो आपके लिए बोलना बहुत आसान है। तो कहते हैं कि पहले तो ये बात भी होती थी, अब तो वो श्रग शोल्डर करके चले जाते कि मम्मा डजंट अंडरस्टैंड, डैडी के पास टाइम नहीं, ही डजंट अंडरस्टैंड। तो द पेरेंट इज ऑल्सो फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट एट दिस पॉइंट टाइम कि मैं अपने बच्चे को सही दिशा की तरफ कहां से, उसमें ये माइंडसेट कैसे बैठाऊं कि बेटा दिस इज लाइफ, ऐसा ही होगा, तुमको पॉजिटिव ही सोचना है, नेगेटिव सोच के तुम आगे नहीं बढ़ोगे।
4: जब बीमार होते हैं ना या बुखार होता है तो खीर भी कड़वी लगती है।
3: हाँ बिल्कुल,
4: होती तो नहीं है ना। तो जिस समय पर वो बीमार है या दर्द में है और हम उस समय उनको कुछ कहते हैं, दे माय श्रग देयर शोल्डर्स, बट इट इज नॉट कि वो चीज उनको हेल्प नहीं करेगी, रजिस्टर होती है। केवल जो उनका रिस्पॉन्स होता है उस समय वो, बिकॉज दे हर्ट ना उस समय, एवरीथिंग इज नॉट गोइंग परफेक्ट फॉर देम। अब बीमार है, आप उसको खिचड़ी भी खिलाएंगे तो उसकी हेल्थ को अच्छा ही करेगी। आप उसको कुछ मीठा भी खाने के लिए देंगे, सो जो उसका काम है वो करेगी, जो फूड का नरिशमेंट उसको मिलेगा, लेकिन उसको सब कुछ क्या लगेगा,
3: कड़वा ही लगेगा।
4: तो आप ये कहेंगे ले मैंने तो इतने प्यार से बनाया, मैंने तो इतना मीठा बनाया, और ये देखो इसकी महिमा करने की जगह और ही कह रहे हैं कि ये तो कड़वा है, बीमार है।
3: तो पेरेंट को भी हर्ट में नहीं जाना उस समय, ये नहीं सोचना कि यार मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप अपना काम करते जाइए।
4: यस, मना एक पेरेंट को तो बार बार वो चीज कहनी ही होती है। समटाइम्स जिस समय आप कह रहे हैं वो उतना उसको अगर अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, मे बी बिकॉज दे आर हर्ट, देन आई ऑलवेज से लुक फॉर द राइट मोमेंट।
3: हाँ बिल्कुल,
4: ऐसे समय जरूर होते हैं कि आप भी स्टेबल हैं, वो भी स्टेबल हैं। हर समय तो कोई हर्ट नहीं होता ना। अभी अभी हो सकता है स्कूल में कोई इंसिडेंट हुआ, वो हर्ट है, आप उसी दिन समझाने की कोशिश करते हैं।
3: सही बात है।
4: आप कहते हैं वो ठीक हो जाए, क्यों? क्योंकि आप पेरेंट्स बच्चों से अटैच्ड होते हैं।
3: हाँ।
4: तो उनकी खुशी में पेरेंट्स की खुशी होती है।
3: जी बिल्कुल।
4: तो वो सोचते हैं ये कैसे भी करके ठीक हो जाए, क्योंकि ये ठीक है तो हम ठीक हैं।
3: हम ठीक हैं। हाँ।
4: Rather the whole point is आप ठीक रहो, आप कंफर्टेबल नॉर्मल रहो, एंड व्हेन ही बाउंसेस बैक हैव अ टॉक। और बहुत करके हम नहीं करते बात, हम कहते अभी तो सब ठीक चल रहा है ना।
3: हाँ।
4: चलो जितने दिन ठीक निकल जाते हैं अच्छा है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: विश्व लिख रहे हैं कि मुझे लाइफ में स्टक फील होता है, जब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा होता तो आप मोटिवेशन कैसे बनाए रखते हैं, इस बारे में बताइए।
3: ऐसे मोमेंट्स हम सबके जीवन में आ जाते हैं, स्टक हम उसको कहते हैं। हमें लगता है कि वी हैव प्लान्ड आवर लाइव्स इन अ सर्टेन वे एंड समटाइम्स इट इज टोटली डिफरेंट
2: फ्रॉम व्हाट वी प्लान्ड।
3: तो हमें कई बार लगता है कि वी आर वेरी स्टक, वी आर नॉट ग्रोइंग। समटाइम्स आई फील दोज आर द एग्जैक्ट मोमेंट्स व्हेन यू आर ग्रोइंग।
2: क्या बात है, बहुत बढ़िया
3: सच में, क्योंकि कई बार आपको ग्रोथ सिर्फ एक्सटर्नल अकम्पलिशमेंट में लगती है। कभी कभी स्टक होना और चीजें आपके अनुसार न चलना, आपकी जो उस समय पर एक्सेप्टेंस पावर बढ़ती है, वो एक्सेप्टेंस पावर कभी भी नहीं बढ़ती है। तो एक्सेप्टेंस पावर है, अकोमोडेट करने की पावर है, लेट गो करने की पावर है, वो सारी पावर्स कई बार तब बढ़ती हैं जब आप स्टक होते हैं। नो, इवन लेटिंग गो दैट लाइफ हैज टू बी दिस वे। हमारी प्लानिंग और डिवाइन प्लानिंग कई बार बहुत अलग होती है, और डिवाइन प्लानिंग में जो मैजिक छिपा होता है वो कई बार उस समय हमें नहीं दिख रहा होता। इसलिए फिर वो जो गीता की लाइन है, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत अच्छा है। तो उस चीज के ऊपर फेथ रखकर डोंट टेल योरसेल्फ दैट यू आर स्टक। मे बी थिंग्स आर नॉट गोइंग द वे यू हैड प्लान्ड, दैट्स इट। इट इज जस्ट नॉट गोइंग द वे यू हैड प्लान्ड, बट इट इज परफेक्ट।
2: एब्सोल्युटली
3: इट इज परफेक्ट, एक्यूरेट, एंड देयर इज समथिंग very good stored in that.
2: कहते हैं कि life happens when you're busy making plans.
3: Yeah.
2: तो आप tension मत लो, बिल्कुल सब सही है, आप सही जगह पे हैं. You are exactly where you needed to.
3: Yeah.
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा with विशाल सेठिया and ब्रह्मा कुमारी sister श्रेया only on मिर्ची it's hot.
4: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirch.

0: कभी तो हंसाए।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: बच्चों से उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स पर बात करने का सही समय कौन सा होता है, क्योंकि हर कॉन्वर्जेशन का एक राइट इमोशनल टाइमिंग होता है। आइए इस कंफ्यूजन को समझें।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: शायद ये सोच रहे हैं कि जितने शायद ये होता है कि सब ठीक ही होगा इसलिए सब ठीक है, इंसान इसलिए इस करके उस समय बात नहीं करता। हाँ। क्योंकि जब भी बात करता है तब रिजेक्ट हो जाता है कि भाई, तो उसको लगता है कि अब ठीक है मतलब सब इसकी जिंदगी में सही होगा। हाँ। तो अब बात करने का फायदा
5: बात करे, फिर कोई बात निकल जाए, फिर इसका मूड खराब हो जाए। बट नो, यू नो द बेस्ट टाइम टू हैव अ कॉन्वर्सेशन इज व्हेन बोथ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, टीचर एंड चिल्ड्रन, बोथ पार्टीज, बोथ पीपल अक्रॉस द टेबल आर इन अ स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड।
4: बहुत अच्छी बात कही आपने, अक्सर ऐसे नहीं सोचते हम।
5: बात रजिस्टर कैसे हो गया, आप देखिए आज पढ़ाई भी है, कुछ भी है, अगर आपको उसको अब्सॉर्ब करना है, आप उसमें काम तो बाद में करेंगे पर आपको अब्सॉर्ब करके अगर रिफ्लेक्ट भी करना है
4: जी,
5: तो आपको एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में तो होना चाहिए।
4: बिल्कुल,
5: ना
4: बिल्कुल।
5: हर्ट चीज पर तो आप अगर स्पिरिट पे लगाओ तो क्या होता है,
4: जलेगा।
5: एनीथिंग दैट इज गुड आल्सो फॉर द वुड, वो भी उस समय जलता है, तो अच्छी बातें भी उस समय अच्छी नहीं लगती है।
1: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
1: नो
0: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट। ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
2: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। कुछ सवाल आए हैं सिस्टर श्रेया। तो पहले है सुयश लाढ़ा जी हैं पुणे से। वो लिखते हैं कि डर से कैसे ऊपर उठ सकते हैं या इसे कंट्रोल कैसे करें, जैसे कि किसी अपने को खोने का डर, बीमारी का डर, फेल होने का डर या कुछ बुरा होने का डर। प्लीज हेल्प मी।
2: डर वैसे देखा जाए तो कमजोर मन की निशानी है, क्योंकि जिन चीजों की बातें उन्होंने लिखी है वो सब हमने अक्वायर की है। चाहे वो
1: सही बात है,
2: और वो सब छूटनी है एक न एक दिन। तो डर उनको छूटने का नहीं है। हाँ। चाहे वो आपकी खुद की बॉडी है, आपका कोई लव्ड वन है, कोई पोजीशन है। हाँ। इनमें से कोई भी चीज परमानेंट तो है नहीं।
1: सही बात है,
2: छूट सकती है। इफ आई से कि नहीं नहीं कुछ नहीं छूटेगा, बिल्कुल फिकर हाँ। नहीं करो, आप बिल्कुल चिंता नहीं करो।
1: हाँ।
2: तो ये तो सत्य नहीं है। सत्य तो यही है कि जो चीजें आपने अक्वायर की है वो कभी ना कभी छूट सकती है।
1: जी बिल्कुल।
2: लेकिन दूसरा सत्य ये है कि जो चीजें आपने अक्वायर की है उनको इंजॉय करना जरूरी है। कमजोर मन क्या कर रहा है, उनको पकड़ रहा है, उनसे अटैच हो रहा है। खोने से पहले अपने मन में देख रहा है कि मैं कहीं ये खो ना दूं, मैं ये कहीं खो ना दूं।
1: सही बात है।
2: ये थॉट उनको डर क्रिएट कर रहा है। तो आप पहले इस जीवन के सत्य को एक्सेप्ट करें कि ये सब चीजें हमने जो अक्वायर की हैं ये पेरिशेबल है, इनमें से कुछ भी छूट सकता है। लेकिन जब तक ये हमारे साथ है क्यों ना हम इसका सुख लें, हम इसको एंजॉय करें। चाहे वो हमारे लव्ड वंस हैं, चाहे वो हमारा करियर है, हम उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करें और इस थॉट को अपने अंदर से खत्म करें।
1: क्या बात है। वैसे भी कहते हैं कि डर के आगे जीत है। तो जब तक डर से डरोगे, डर आपको उतना ही डराएगा। जिस दिन आप डर को डराओगे उस दिन डर आपसे डरेगा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
2: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।

0: Mirchi Morning, only on Mirchi. It's hot.
1: Healthy mind के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते. Till then, सुनो Mirchi Recharge Mornings. सुबह 6 से 8. Only on Mirchi. It's hot.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: क्या स्कूल में टीचर्स के फेवरेट स्टूडेंट्स पर भी अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर होता है और क्या एक्सपेक्टेशंस कभी उनके लिए बर्डन बन जाती हैं? आइए इस बारे में जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: कुछ बच्चे थे, उन्होंने एक बच्चे की तरफ पॉइंट किया जब हम बात कर रहे थे स्कूल के प्रॉब्लम्स को लेके, कि आप उससे पूछिए ये टीचर का पेट है। तो बच्ची जो है वो बहुत हसमुख थी, वो आई बोली मैं टीचर की पेट इसलिए हूँ क्योंकि मैं अच्छा काम करती हूँ, मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छी हूँ, मैं पढ़ाई भी अच्छा करती हूँ, तो इनको लगता है मैं टीचर की फेवरेट हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने कहा बताओ। कहती है कि ये बहुत तकलीफ है कि मुझे इन लोगों को लगता है मैं टीचर की पेट हूँ, कभी कभी इसका भी ज्यादा प्रेशर होता है क्योंकि टीचर के उस पे क्या कहते हैं एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना इज अ वेरी वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं हर बार लेना नहीं चाहती। तो फिर मैंने दूसरों की तरफ मुड़ के कहा कि देखो यहाँ पे भी दिक्कत है, ऐसा नहीं कि ये बहुत खुश है। तो हंसने लग गए थे। बट इसमें मुझे जो मूल बात, जो गहरी बात लगी कि जो टीचर के फेवरेट होते हैं वो ज्यादातर बाकी बच्चों को पसंद नहीं आते, लेकिन उनपे जो प्रेशर होता है वो खुद उससे जूझ नहीं पाते। कभी कभी उनको बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन क्योंकि वो टीचर के फेवरेट हैं, हर बार सिलेक्ट होते हैं, उनकी मंशा के बारे में कौन सोच रहा है, क्योंकि बाकियों को तो लगता है तो बेस्ट है।
4: ऐसे स्कूल के अंदर फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए।
3: ये एक तरीका है बोलने का, फेवरेटिज्म हो रहा नहीं हो रहा है वो
4: ये जरूर बात है कि एक बच्चा अगर कोई आज्ञाकारी है, ओबीडियंट है, सब काम करता है, इट्स अ वेरी नेचुरल इंस्टिंक्ट कि आप एक टीचर हैं तो आपके भी जो ब्लेसिंग्स हैं उस बच्चे के प्रति रहती हैं।
3: जी।
4: एक बच्चा है जो टीचर को भी तंग करता है, टीचर के बारे में भी बोलता है। थोड़ा सा अगर आप बहुत केयरफुल और माइंडफुल नहीं हो तो ये ह्यूमन बिहेवियर की कैटेगरी में आ जाता है। बट एवरी टीचर शुड ट्राई।
3: जी।
4: देखो टीचर का काम है हर एक को एम्पावर करना। मना जो जितना कमजोर है उसको उतना ज्यादा प्यार और अटेंशन चाहिए।
3: वो ज्यादातर होता नहीं, उल्टा होता है।
4: होना तो चाहिए
3: कि ये क्वाइट है, ठीक है, पीछे बैठे रहो तुम।
4: वो एक स्टोरी भी सुनाते थे ना हम लोग पहले सुना करते थे कि वो एक बच्चा था, इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली ही वॉज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड या कुछ, तो उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे नहीं होते थे, शैबिली ड्रेस्ड होता था, क्लास में कोने में बैठा रहता था, तो वो टीचर को पसंद नहीं आता था, ज्यादातर डांट खाता था। एंड उसके जो ग्रेड्स को देखते हुए जो फाइनल रिपोर्ट है वो भी अच्छी नहीं थी।
3: जी, तो मेरे बारे में बात कर रही हैं आप।
4: किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है ये, स्कूल में कहीं पर देखा जाता है। एंड देन टीचर्स डे आया, नॉर्मली आप देखते हैं बच्चे बहुत प्यार से टीचर्स के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर के आते हैं।
3: जी।
4: तो वो बच्चा भी, सब बच्चे बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट लेकर के आए, रैप करके, वेरी ब्यूटीफुल। ये जो बच्चा था लास्ट में ये भी आया और उसने भी एक कोई हाफ फिल्ड परफ्यूम की बॉटल थी।
3: अच्छा।
4: और एक थोड़ा टूटा हुआ ब्रेसलेट था जो उसको दिया, तो टीचर को लगा ये कैसा गिफ्ट है ना। स्टिल शी टुक इट। एंड देन लेटर द टीचर फाउंड आउट फ्रॉम अदर टीचर्स, उसने जब बात करी ये इतना शाबी है, इसके ग्रेड्स ठीक नहीं है, देखो ये कैसा गिफ्ट दिया है। तो फिर किसी टीचर ने उसको बताया कि व्हेन ही वाज इन थर्ड स्टैंडर्ड ही लॉस्ट हिज मदर एंड फादर जो है अभी ही इज टुक अप टू ड्रिंकिंग, अल्कोहलिक हो गए हैं, सो देयर इज नोबडी टू टेक केयर ऑफ हिम। एंड जो ये एम्प्टी, हाफ एम्प्टी परफ्यूम बॉटल है प्रॉब्ली ये उसकी मदर की है। सो कुछ जो उसकी स्टोरी बताई, देन द टीचर वेंट बैक एंड शी लुक्ड एट ऑल द ग्रेड्स जो फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड में थे, एंड ही वॉज अ वेरी हाई अचीवर, सब कुछ था। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज मदर पास्ड अवे that you know he was behaving in such a manner. I don't really remember the story very carefully, but what touched me was that next day wo perfume laga karke gayi, the child hugged that teacher and said the first time I smelled my mom.
3: Kya baat.
4: So you know यंग बच्चे हैं, पता नहीं क्या क्या चीजों से गुजर रहे हैं, हर एक के घर में क्या होता है, जब वो एक टीचर के पास आते हैं इट्स लाइक अ सेकंड पेरेंट।
3: बिल्कुल सही।
4: तो उस बच्चे को जज करने के जगह थोड़ा सा अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें उसका पास्ट क्या है, उसकी स्टोरी क्या है, एंड देन दैट टीचर स्टार्टेड पेइंग अटेंशन ऑन दैट चाइल्ड And then he started doing well again. And they became so close that on his wedding, he called that teacher and she came wearing that bracelet.
3: Kya baat, the
4: same bracelet.
3: Khubsurat.
4: So, the whole thing was ki usme us teacher ne kaha ki hota to hum hai ki hum bachchon ko sikhaye. But actually, ye bachcha mere jeevan mein mujhe sikhane ke nimit bana aur ek mod lane ke nimit bana. I really feel that, you know, all souls are going through a lot and every teacher need to try and understand ki wo bachcha kis cheez se guzar raha hai.
0: Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.

0: searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
1: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
0: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
1: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानी।
0: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
2: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। डॉक्टर सुरिल दवे हैं, अहमदाबाद से लिखते हैं। हाय सिस्टर श्रेया एंड विशाल सर, पहली बात तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेरा नाम विशाल सेठिया है, विशाल सर नहीं है। सिस्टर श्रेया आप जरूर पुकार सकते हैं इनको, प्लीज मुझे विशाल कहें। वो लिखते हैं कि मैं पिछले 2 महीनों से एक रेप्यूटेड हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। अभी कुछ टाइम से मेरी मैनेजर काम करने का तरीका जो उनका है वो पूरी तरह से बदल रही हैं। पहले वो मुझे काम का एक तरीका समझाती हैं, फिर दिन के एंड में कहती हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें दूसरे तरीके से करना चाहिए था। इस बात पर वो मुझे ताने भी देती हैं और क्रिटिसाइज भी करती हैं, जो मुझे मेंटली अफेक्ट कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ।
2: किसी के साथ भी हम काम करते हैं तो एक अच्छा रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है
1: जी,
2: नहीं तो वो हमारे काम पर इम्पैक्ट करता है। और अगर आप एक डॉक्टर हैं तो एक स्टेबल माइंड होना बहुत जरूरी है। एक डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर सकता मेंटली
1: बिल्कुल
2: थोड़ा भी
1: परेशान
2: रहना, बिकॉज सी एज अ डॉक्टर हर एक को समझना है कि लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं
1: जी।
2: कई बार अपने लव्ड वंस को पूरा का पूरा आपके आगे सरेंडर कर देते हैं। तो हमारे लिए काम स्टेबल होना, मेंटली स्ट्रांग होना बहुत बहुत जरूरी है। तो वो जो एक रिलेशनशिप है आप उसको ठीक करने की कोशिश करें, उनके साथ कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करें। और फिर भी अगर आपको लगता है कि वो बहुत टॉक्सिक है, आप सब कुछ कर रहे हैं उसके बाद भी अगर वो शिफ्ट नहीं आ रहा है, इट इज टेकिंग अ टोल ऑन यू, देन मे बी यू कैन ट्राई Working at another place also, but वो last option हम रखते
1: जी,
2: हैं।
1: बिल्कुल।
2: पहला option हमेशा conversation का होता है कि हम उनको समझने की कोशिश करें। अब इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि अगर ये चीज कभी कभी होती है तो समझ में आता है।
1: सही बात है।
2: अगर ये डेली हो रही है
1: हाँ।
2: so then it is not working style, कि relationship में problem है।
1: Right.
2: आप कई बार देखिए वर्किंग स्टाइल में आप आपके अंदर कोई कमी या गलती है तो महीने में 4 बार वो बात होगी, 2 बार वो बात होगी, मुझे आपका कुछ ठीक नहीं लग रहा।
1: लेकिन रोजाना नहीं होगा।
2: लेकिन अगर रोजाना हो रहा है तो मुझे आप ठीक नहीं लग रहे हैं।
1: सही बात है।
2: दोनों में बहुत फर्क है। आप ही ठीक नहीं लग रहे हैं तो देन आई फिगर आउट सम वे कि आपको कुछ ना कुछ नहीं, मैं कुछ ना कुछ आपसे लड़ने के लिए या आपको क्रिटिसाइज करने के लिए कोई भी तरीका कोई भी बात उठा लेती हूँ। तो थोड़ा डीप में जाएं, क्या प्रॉब्लम है? इंटरनल जेलसी है, इनसिक्योरिटी है, कोई पहले का कोई कॉन्फ्लिक्ट है, रिजोल्व करने की कोशिश करें।
1: और शायद जो आपने कहा ना, जो छोड़ना है वो शायद आखिरी कदम है, उसके पहले शायद एक कदम और है। आपने बहुत पहले एक बहुत कमाल की बात कही थी कि शायद उसकी जिंदगी में कुछ चल रहा होगा, तो उसमें कह सकते हैं कि इस वक्त मैं तेरे ताने भी सह लूंगा, खराब है मेरा वक्त ये सोच कर रह लूंगा।
2: खराब है वक्त न कह करके, आपको पता है कभी कभी अगर हम किसी डिफिकल्ट व्यक्ति के साथ रहते हैं हम कितने स्ट्रांग बन जाते हैं एक्चुअली।
1: बिल्कुल।
2: अगर हम चाहे तो उसका शुक्रिया कर सकते हैं कि आपके ऐसे बिहेवियर से मेरा खराब वक्त नहीं है, लेकिन मेरी इतनी रेजिलियंस बढ़ गई कि अब तो मैं किसी के साथ भी काम कर सकता हूँ।
1: वो कहते हैं कि what doesn't kill you makes you stronger। बिल्कुल, बहुत सही बात।
2: But then you know again why I say is actually we should never never think of leaving until and unless it is unethical।
1: Right.
2: But कभी कभी now it has started taking such a toll on people, इतना ज्यादा कि वो एक्सट्रीम तक सोच लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाएंगे, सुसाइड कमिट करने का सोच लेंगे। अभी सुसाइड्स भी कई बार आप क्या सोचते हैं, 23 ईयर ओल्ड था, 24 ईयर ओल्ड था, बिल्कुल ठीक ठाक था, मीटिंग में था, अचानक ऐसा हो गया। सो उतना एक्सट्रीम में जाने से तो फिर आप वर्क शिफ्ट कर लें, और नहीं तो फिर आप उस रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करें
1: जी।
0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जिंदगी की छोटी छोटी अच्छी चीजों के लिए ग्रेटफुल रहना हमारी हैप्पीनेस को कैसे बढ़ाता है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: आपने तो मुझे बावर्ची फिल्म की याद दिला दी, जहां राजेश खन्ना भी ऐसे ही एक परिवार में रहता है और वो सब में खुशियां बांट के फिर निकल लेता है। उसके लिए आसान था, वो निकल गया, यहाँ पे रहना साथ में है। तो आप जो बात कह रहे हैं सही तो लग रही है, इस पे अमल करना कितना आसान है या पॉसिबल है।
4: अपने साथ रिश्ता बनाए। हमारा रिश्ता दूसरों के साथ है, हमें सारा दिन एक्सपेक्टेशन होती है वो मेरे से अच्छे से बात करे। आप अपने साथ रिश्ता बनाएं, हमें एक ही चाहिए जो हमारे से अच्छे से बात करे,
3: वो खुद हैं।
4: अगर हम खुद अपने से अच्छे से बात करें, उनको जो ज्यादा दुख है ना, वो इस चीज का है जो वो कॉन्वर्सेशन सारा दिन अपने साथ करते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी शादी इस परिवार में क्यों हुई,
3: सही बात,
4: मुझे ही ऐसी मदर इन लॉ क्यों मिली,
3: सही बात,
4: मुझे कोई समझने वाला क्यों नहीं है, मुझे कोई अंडरस्टैंड करने वाला क्यों नहीं है, मेरी कोई वैल्यू क्यों नहीं करता है। दिस कॉन्वर्सेशन ये रिपीट मोड पर बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह चलती रहती है।
3: अच्छा, तो आप कह रही हैं कि मुझे कहना चाहिए कि मैं फ्यूचर को एक दूसरे नजरिए से देखूं कि यार क्या खूबसूरत परिवार है, मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी है, मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती है, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितनी खुश हूँ, मेरे बच्चे कितने खुश हैं।
4: और इससे शायद चेंज हुआ नहीं है क्योंकि अगर मदर इन लॉ अच्छी नहीं है तो वो हमें दिखाई दे रहा है, बट ऑन दी अदर हैंड उनके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होगा जिसके लिए वो अवेयर नहीं है। मना जो हम कई बार कहते हैं कि ठीक है 10 प्रॉब्लम्स होंगे लेकिन 90 चीजें अच्छी भी होंगे।
3: हाँ।
4: तो ग्रेटफुल का संस्कार खत्म हो गया है।
3: सही बात है।
4: कंप्लेन मोड, ब्लेम मोड, ये आपको असंतुष्ट करता है जीवन में। होता तो सबके जीवन में ही है, 100 चीजें हैं 90 ठीक होंगे 10 ठीक नहीं होंगे, लेकिन कई है जो उन 90 ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं, वो खुश रहते हैं, हल्के रहते हैं, हमें लगता है उनके जीवन में सब कुछ ठीक है। फिर कोई बताता है तो हम कहते हैं अच्छा इनके जीवन में इतना सब कुछ चल रहा है पता ही नहीं चला, आज ये बीमार है पता ही नहीं चला, इनकी मदर एडमिट है पता ही नहीं चला। दे आर चूजिंग कि वो सारी चीजों के साथ वो उन चीजों के अवेयरनेस में है कि नहीं, जो थिंग्स दे आर ग्रेटफुल फॉर, चाहे वो उनकी बॉडी है, उनके बच्चे हैं, उनका परिवार है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, या स्पिरिचुअल नॉलेज है, कुछ भी है, देयर इज सो मच दैट यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर। तो मैं ये नहीं कह सकती उनको कि अगर वो चीज ठीक नहीं है तो वो कहे ये बिल्कुल ठीक है, रादर शी शुड बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट शी हैज। वो उनको एक अच्छे माइंडसेट में रखेंगे, वो ग्रेजुअली उनका रिश्ता जिनके साथ ठीक नहीं है उनके साथ भी ठीक करेगा। अगर मेरा रिश्ता मेरे खुद के साथ ठीक है तो ऑटोमेटिकली उसके रिफ्लेक्शन मेरे बाहर के रिश्तों में भी दिखाई देगी। आपसे राइट एनर्जी रेडिएट होगी, आप किसी के प्रति अगर शुभ भावना रखते जाएंगे, अच्छा सोचते जाएंगे, तो ग्रेजुअली वो भी तो वहां से चेंज होने लगेंगे ना। ये तरीका है, ऐसी होता क्या, विशेष साइकिल हो रही है, वो गलत सोच रहे हैं आप गलत सोच रहे हैं, वो गलत सोच रहे हैं, वो ब्लैक बॉल फेंक रहे हैं आप ब्लैक फेंक रहे हैं, वो ब्लैक फेंक रहे हैं आप फेंक रहे हैं, किसी को तो व्हाइट फेंकना पड़ेगा ना, कौन फेंकेगा। एक है आप इंतजार करें वो फेंके, एक है कि आप डिसाइड करें नहीं आई वॉन्ट टू इम्प्रूव दिस रिलेशनशिप लेट मी ट्राई।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर श्रेया, मोहम्मद मैंगलोर से लिखते हैं कि ईगो और जलन से कैसे बचें और दूसरों की सक्सेस को अपनी सक्सेस जैसे कैसे सेलिब्रेट करें और कैसे महसूस करें कि हम भी उसकी सक्सेस में इंक्लूडेड है। बहुत अच्छा सवाल है।
3: जलन कब होती है? जब हम कंपेयर करते हैं।
2: जी,
3: कंपैरिजन, अगर हमें ये समझ जाए कि दो सोल्स एक डिफरेंट जर्नी पर है, मेरे कर्म से मेरा भाग्य, उनके कर्म से उनका भाग्य, तो हमें किसी की भी सफलता को देख करके जेलसी नहीं होगी। वेयर ऑन अ डिफरेंट आर ओन इंडिविजुअल जर्नी।
2: जी,
3: जलन कब होती है? जब मुझे लगता है शायद उसने मेरा क्रेडिट ले लिया।
2: हाँ।
3: शायद ये मुझे मिलना था तो उसको मिल गया।
2: जी,
3: समवेयर वो इनसिक्योरिटी और जेलसी सेट इन होने लग जाती है। जेलसी का रूट कॉज कंपैरिजन है।
2: हाँ।
3: और कंपैरिजन में आप क्या करते हैं कि उसको मिला मुझे नहीं मिला, द मोमेंट यू अंडरस्टैंड कि आपको वो मिलेगा जो आपके कर्म है, उनको वो मिलेगा जो उनके कर्म है, तो आप मन किसी की सफलता को देखकर जेलस होते ही नहीं हो। आपको पता है कि उनके कर्म का भाग्य उनके सामने लौट कर आया है, जो हम कई बार कहते हैं कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है, तेरा है वो तुझे मिलेगा और कोई छीन नहीं पाया है। सो कंपैरिजन इज दैट ओल्ड एज डीमन दैट रॉब्स यू ऑफ हैप्पीनेस।
2: क्या बात है,
3: आपकी खुशी को वो खत्म कर देता है।
2: तो कंपैरिजन मत करो मोहम्मद, और खुश रहो, और अपने दोस्तों की सक्सेस में आप इंक्लूडेड भी फील करेंगे और सेलिब्रेट करने का मन भी करेंगे।
3: देखिए, एक चीज ये भी समझना है कि अगर हम किसी की सफलता से जलते हैं तो हम सफलता से जल रहे हैं।
2: हाँ,
3: वो हमारे पास कभी नहीं आएगी।
2: सही बात है।
3: अगर आप औरों की सफलता में खुश होते हैं,
2: क्या बात है,
3: तो वो सफलता आपके घर में भी दस्तक देगी।
2: बहुत बढ़िया, वेरी नाइस।
3: एंड जेन्युइनली फ्रॉम इनसाइड, अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो आप उसकी सफलता में, उसके आगे बढ़ने में खुश होंगे, उसको दुआएं देंगे, तो वही एनर्जी आप तक लौट करके आए।
2: तो सफलता की जो फसल है, सफल की जो फसल है वो तुम आज बो, अगर आप सफलता से ही ईर्ष्या करने लगोगे तो सफलता आपके घर पे कभी दस्तक नहीं देगी।
3: सफलता का मतलब भी क्या है, हिंदी में बहुत सुंदर है। इंग्लिश में हम कहते हैं सक्सेस, हिंदी में हम कहते हैं सफलता। सफलता का मतलब है सफल करना। तो सफल किसको कहते हैं? एक्चुअली हमारे हिंदी में बहुत सुंदर वर्ड है। आप उस व्यक्ति को सफल कहते हो जिसको जो कुछ मिला है वो उसको सफल करता है, चाहे वो उसका समय है, टैलेंट है, स्किल है, धन है। जब आप उसको दूसरे के बेनिफिट के लिए लगाते हो, उससे किसी का कल्याण होता है, जिसको हम कहेंगे दानी है, महादानी है, फिलैंथ्रोपिस्ट है, सच्चे अर्थों में वो सफल है। किसी के पास बहुत है लेकिन मना वो सफल, उसको सफल करना नहीं आता, उसको लगाना ही नहीं आता। क्योंकि जब हम सफल करते हैं तो वो हमारा भी बढ़ता है। आप कभी भी नोट करना, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज भी अच्छे से बनानी आती है, सफल करने का मतलब है आप किसी और को सिखाते हो।
2: सही बात है।
3: तो वो स्किल आपकी भी बढ़ेगी।
2: हाँ।
3: और उनको आपने सिखाया तो उनसे दुआएं मिलेंगी।
2: हाँ।
3: तो उनकी दुआएं और आपकी जो स्किल बढ़ रही है वो आपको और सफल कर दी जाएंगी।
2: क्या बात, बहुत बढ़िया।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्केटवे आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यु आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरुदेव।
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।

0: Energy, it's hot.
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते. Till then, सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
2: It's 8:30 AM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry में सिर्फ एक ही नाम. RK Jewels. Best quality, best price.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एक सच्चा दोस्त हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, जब मैं बच्चों के ग्रुप से बात कर रहा था, एक सवाल एक और बहुत कॉमन जो चीज निकल के आई कि हम क्या है, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग घरों से आते हैं, अलग अपब्रिंगिंग से आते हैं, कभी कभी अलग रिलीजन से आते हैं, कास्ट से आते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, अलग थॉट प्रोसेस से आते हैं, और ये बहुत जरूरी है, और इसीलिए कभी कभी फ्रेंड्स बनाना बहुत मुश्किल होता है। और मेरे जो आसपास के लोग हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, नेबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, बोलते हैं अरे रे इतने सारे लोग हैं, फ्रेंड्स बनाने में क्यों दिक्कत है, लेकिन मैं अलग हूँ और मैं यूनिक हूँ और मेरे लिए मुश्किल होती है। कुछ लोग होते हैं जो आसानी से फ्रेंड नहीं बना पाते और उनका कंपैरिजन हमेशा दूसरों के साथ, देखो उसने तो कितने फ्रेंड्स बना लिए, देखो उसकी पार्टी में इतने लोग आए, तुम क्यों नहीं बना पा रही हो या बना पा रहे हो, और वो कहते हैं कि उसके लिए वो भी एक डिफिकल्ट चीज बन गया और उस कॉन्वर्सेशन से वो दूर भागते हैं। वो कहते हैं कि भाई नहीं बन रहे मुझसे फ्रेंड्स, और मैं कोशिश कर चुकी हूँ नहीं बनाने मुझे फ्रेंड्स, वो उस लाइन पे चले जाते हैं फिर। तो ऐसे केस में क्या करें?
4: पहले तो अलग अलग हम पर्सनालिटीज है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। कई इंट्रोवर्ट होते हैं, कई एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कईयों के बहुत फ्रेंड्स होते हैं, कईयों का एक ही होता है और कईयों का एक भी नहीं होता।
3: बिल्कुल,
4: आई थिंक इट इज ओके, एज लॉन्ग एज वो व्यक्ति कंफर्टेबल है। फ्रेंड्स क्यों चाहिए? व्हाई डू वी वांट अ फ्रेंड? क्या मना, फ्रेंड से हमें क्या मिलता है?
3: फ्रेंड से सपोर्ट मिलता है, दोस्त वो होते हैं कि वो कहते हैं ना कि दौलत और जवानी एक दिन खो जाएगी। सच कहता हूँ यारो, बेसिकली दोस्त हमेशा जिंदगी में रहेंगे आपके सपोर्ट में।
4: तो आप सपोर्ट चाह रहे हैं ना फ्रेंड से, अगर किसी को नहीं वो सपोर्ट चाहिए तो उसको फ्रेंड की जरूरत नहीं पड़ती।
3: लेकिन आज शायद उसको समझ नहीं है कि दोस्त नहीं चाहिए जिंदगी में, आगे तो दोस्त ही काम आएंगे।
4: ऐसा नहीं है, सबसे बड़ा दोस्त खुदा दोस्त होता है।
3: हाँ बिल्कुल,
4: कईयों ने उसको दोस्त बना लिया होता है, उसके बाद उनका देखो एक है हमारा सबके साथ कनेक्शन है, लेकिन एक है हमारी किसी के ऊपर डिपेंडेंसी है।
3: हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए।
4: से कि आप जो आजकल हो जाता है ना सोशल एंजाइटी है,
3: हाँ।
4: वो एक बहुत अलग चीज है कि आप कंफर्टेबल नहीं है लोगों से मिलने में, आप कंफर्टेबल नहीं है उनसे बात करने में, वो नहीं होना चाहिए।
3: लेकिन पेरेंट हो या कोई आपका शुभ चिंतक हो, उनको बड़ी वो सोच में पड़ जाते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा क्यों है, वो अलग क्यों रहता है।
4: बच्चे तो अलग होने ही है, वो ये देखें कि वो बच्चा अलग होके भी कंफर्टेबल है। कई बच्चे बहुत कंफर्टेबल होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बना कहीं नहीं कंफर्टेबल होते, वो भाग रहे होते हैं सोसाइटी से।
3: बिल्कुल, वो समझे
4: कैसे, चीज है
3: वो कैसे समझ में
4: आएगा? दिखाई देता है, आपका बच्चा खुश है, आपका बच्चा कंफर्टेबल है, आपका बच्चा घर में गेस्ट आते हैं उनसे बात करता है, बहुत बातें नहीं कर पाता लेकिन बात करता है, हर एक को रिस्पेक्ट करता है, हर एक को रिगार्ड देता है, नॉर्मल कम्युनिकेशन कॉन्वर्सेशन कर पाता है, सो उसमें कोई सोशल एंजाइटी नहीं है।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। सिस्टर श्रेया, एक सवाल आया है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन पढ़ नहीं पा रही हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, अपने माँ बाप का ख्याल रखना पड़ता है, अपनी बेटी का भी ध्यान रखना पड़ता है, साथ ही घर के काम भी होते हैं। फिर भी पढ़ना चाहती हूँ पर समझ नहीं आ रहा कि कैसे करूँ।
2: कभी कभी सर्कमस्टांसेस वैसे नहीं होते जैसे हम चाहते हैं। माना आप चाहें कि आप 8 घंटा पढ़ना चाहें, 10 घंटा पढ़ना चाहें, वो ना भी पॉसिबल हो रहा हो तो भी होप नहीं छोड़नी चाहिए
1: जी।
2: जो भी सर्कमस्टांसेस है उनको एक्सेप्ट करना और उनमें खुश रहना, ये पहले जीवन की बड़ी सफलता और जीत होती है
1: जी।
2: मना हमें लगता है कि हम पढ़ेंगे, पढ़कर कुछ बन जाएंगे तो जीवन में खुशी आएंगे। आखिर तो हर व्यक्ति को शांति और खुशी चाहिए होती है
1: जी।
2: तो जो भी आपके सर्कमस्टेंसेस हैं, आप पहले उसको एक्सेप्ट करें, बहुत दिल से अपना रोल प्ले करें। चाहे आप एक वाइफ हैं, एक मदर हैं, वो सारा रोल अच्छे से प्ले करें, और जितना समय आपको मिलता है अभी उसमें आप पढ़ाई करना शुरू करें। मुझे 100% इस चीज पर फेथ है कि जब हम अपना पार्ट बहुत अच्छे से प्ले करते हैं तो बाकी सब कंट्रीब्यूट करने लग जाते हैं कि कैसे हम अपनी इच्छाओं को और अपनी जो हमारी डिजायर्स उसको पूरा कर सके, क्योंकि वो हमारे से संतुष्ट होते हैं
1: जी।
2: तो उनको संतुष्ट करना, उनकी दुआएं लेना, दुआएं जीवन में बहुत आगे बढ़ाती हैं। सिर्फ हमारी इच्छाएं और सपने ही आगे नहीं बढ़ाते, बहुत करके कई बार कईयों की दुआएं हमें जीवन में बहुत आगे बढ़ाती है। मुझे ये कहानी पिछले दिनों एक व्यक्ति था जो रोज होटल में जाता था और भीड़ के अंदर चुपचाप खाना खा करके आ जाता था और पैसे नहीं देता था।
1: अच्छा,
2: रोज ऐसे करता था और ऐसे खा करके आ जाता था, और कई लोग उस चीज को नोट कर रहे थे। तो उसमें से किसी ने, जो होटल का मालिक था, उसको बताया कि आपको पता है ये रोज ऐसे करता है। उनको लगा वो बताएंगे ना उस मालिक को, तो उसको लगेगा अच्छा ऐसा करता है, मुझे पता नहीं। तो उसने कहा हाँ मुझे पता है।
1: अच्छा,
2: तो कहा आपको पता है? कहा हाँ मुझे पता है। तो कहा लेकिन ये होटल भी तो उसी की दुआ से चल रहा है। तो उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या कह रहा है। तो कहा एक दिन जब इस होटल में कोई भी नहीं थे, बहुत लोग नहीं आते थे, तो ये बाहर खड़े होकर भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान इस होटल में इतने लोग हों कि मैं कब चुपचाप जाकर के खा करके निकल आऊं, किसी को पता भी नहीं चले, किसी को दिखाई भी ना दे। तो उसने कहा कई बार हमें लगता है कि हमारी जो सफलता है वो सिर्फ हमारी मेहनत के कारण ही है, पर कई बार हमारी सफलता के पीछे कई लोगों की प्रार्थना और दुआएं होती है।
1: क्या बात, क्या खूबसूरत बात कही आपने। Beautiful.
2: इसलिए अगर अभी सर्कमस्टेंसेस नहीं भी हैं, पर औरों की दुआएं और औरों की जो शुभ भावनाएं हैं वो जरूर आपको सफल करेंगे।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Bhatia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या टेक्नोलॉजी की वजह से हम रियल सोशल कनेक्शन से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं? आइए इसे समझे।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: घर पे गेस्ट आते हैं वो मिलते ही नहीं, वो रूम में रहते हैं।
4: वो चीज राइट नहीं है।
3: तो मैं यही कह रहा हूँ कि वो जो डिफरेंस है कि मेरा बच्चा फ्रेंड नहीं बना रहा घर पे, जब गेस्ट आ रहा हूँ उनसे नहीं मिल रहा, कहीं बाहर जाना नहीं चाहता, तो नेचुरली एज अ पेरेंट आप थोड़े परेशान होंगे।
4: हाँ।
3: लेकिन जब आप बच्चे से बात करते हैं वो कहते हैं मैं खुश हूँ ना, मुझे नहीं बनाने फ्रेंड्स।
4: हाँ, नहीं, उसमें क्या होता जा रहा है, नहीं वो ठीक नहीं है। जो हमारी एक इमोशनल लेवल पर डेवलपमेंट है वो होती भी तब है जब सोशल कनेक्शन होते हैं।
3: जी बिल्कुल,
4: क्योंकि सोशल कनेक्शन में एनर्जी का एक्सचेंज होता है। व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज कि हम जब लोगों के साथ हैं तो उसको भी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जब हम एकांत में हैं तो भी हम बहुत कंफर्टेबल हैं।
3: वो तो सही है,
4: वी आर नॉट अ लोनर और लोनली नहीं है। उस समय
3: वो सही है।
4: पहले वो फर्क समझना जरूरी है कि एक है कि वो साइलेंस में भी कंफर्टेबल है, अकेले भी कंफर्टेबल है, और लोगों के साथ भी बहुत बहुत कंफर्टेबल है, सेलिब्रेट कर लेते हैं। लेकिन दूसरा, जो आजकल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक चीज जो दिखाई दे रही है, मिलना ही नहीं है, फ्रेंड्स बनाने ही नहीं है, अपने शेल में रहना है, उसका एक बड़ा कारण है टेक्नोलॉजी।
3: बिल्कुल, एक टेक्नोलॉजी तो बहुत बड़ा कारण है ही,
4: क्योंकि जब सोशल कनेक्शंस होते थे तो हमें खुशी मिलती थी, हम किसी से मिल रहे हैं, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। फ्रेंड्स से बहुत ज्यादा क्या होता था, रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस, लव, जॉय आप मिलते थे। अब वही चीज आप क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से ले रहे हैं।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। सिस्टर श्रेया, एक सवाल आया है। कहते हैं कि नेगेटिव थॉट इतने आते हैं कि मन करता है कि मर जाऊं, लेकिन मेरी एक लड़की है, उसके लिए मैं जी रही हूं। आंखों के सामने सब कुछ बुरा दिखाई देता है। मेरा क्या होगा, उसका क्या होगा? भगवान के प्रति भी बुरा दिख जाता है, बहुत बुरा लगता है, चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है, क्या करूं?
2: बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स होना ऐसे हो जाता है जैसे बुखार है। 100 भी होता है, 102 भी होता है, 104 भी होता है। जब 104 बुखार होता है तब आप घर में ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। आप घर में ही करते रहे तो कोई कहता है अभी आप इसको हॉस्पिटल ले जाओ, इसको एक हेल्प सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है।
1: बिल्कुल।
2: ऐसे अगर आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आप घर में नहीं बैठे रहे, आप ये नहीं सोचे सब ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं करें, ये फिर बढ़ जाता है। तो इसमें दो चीजों का आप सपोर्ट ले सकते हैं। पहला मेडिकेशन, थेरेपी है। जब बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग नेगेटिव थॉट्स, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि कई बार थॉट आता है मर जाऊं, ये एक्सट्रीम का साइन होता है। आपको जब जीने की आश खत्म हो जाती है और आप ही जस्ट होल्डिंग ऑन टू दैट थ्रेड कि मेरी बेटी है, विच इज अ गुड थिंग, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा एक्सट्रीम केस है। तो इसमें मेडिकेशन और मेडिटेशन दोनों का सपोर्ट लें।
1: बहुत बढ़िया।
2: मेडिकेशन भी शुरू कर सकते हैं और मेडिटेशन, देखो मेडिकेशन जो है ये भी हर एक को समझने जरूरी है, कोई दवाई मन तक नहीं पहुंच सकती है।
1: सही बात है,
2: है ही नहीं। आप वो मन ऐसी चीज, फिजिकल चीज तो है नहीं, कोई दवाई मन को ठीक नहीं कर सकती। लेकिन मन जब बहुत नेगेटिव सोचता है तो उससे बॉडी के अंदर जो केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है उसको सपोर्ट करने में वो मेडिसिन जरूर हेल्प करती है। आप सिर्फ मेडिसिन लेंगे वो सपोर्ट सिस्टम है। मन को अगर आपको शक्तिशाली बनाना है, व्यर्थ को समर्थ करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, उसके लिए तो आपको स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन का सपोर्ट लेना पड़ेगा।
1: तो मेडिटेशन वो चीज है जो आपके मन के हर कण कण में घुस जाती है, इसका जरूर आप फायदा उठाएं। तो मेडिटेशन एंड मेडिकेशन इज द वे टू गो फॉर यू।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: टेक्नोलॉजी एडिक्शन से पेरेंट्स और फैमिलीज अपने बच्चों को कैसे बाहर निकाल सकते हैं, आइए समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो ऐसे माहौल में जहां टेक्नोलॉजी से उसको बहुत कुछ मिल रहा है लेकिन शायद वो समझ नहीं पा रहा कि, और वो बच्चा है आज, तो चाहे पेरेंट हो या टीचर हो, उसको कैसे उस माहौल से निकालें, क्योंकि फोर्स तो कर नहीं सकते आप बच्चे को।
4: फोर्स नहीं कर सकते, पर गाइड और इंस्पायर तो करना ही पड़ेगा। मना इसमें जितना बच्चा छोटा है और अगर हम करते हैं तो बेटर है। अभी क्या होता है, छोटे में हम इन चीजों का कई बार ध्यान नहीं देते। खाना भी खिलाना है तो हम उसको फोन दे देते हैं।
3: बिल्कुल।
4: टुडे व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग बाय लोकल ट्रेन, इट वाज वेरी अ सीन व्हिच इज लिटिल सरप्राइजिंग। मदर और डॉटर थे, डॉटर प्री स्कूल में है क्योंकि उसकी वो स्कूल ड्रेस में थी, तो उसका प्री स्कूल लगा हुआ था। तो मदर ने उस डॉटर को फोन दिया हुआ था टू कीप हर बिजी, और वो उस पे कोई ड्राइंग करना या वीडियोस देखना था, और मदर के हाथ में एक वो कोई प्रार्थना की किताब थी, वो प्रार्थना की किताब पढ़ रही थी। तो वो उस चीज की इम्पोर्टेंस समझ रही है और वो ट्रैवल टाइम को बहुत अच्छे से सफल कर रही है। शी वॉज रीडिंग समथिंग और वो जो छोटी बच्ची थी वो फोन पे लगी हुई थी। नाउ दे कुड हैव डन दिस टुगेदर, जो प्रेयर था वो साथ में कर सकते थे, बट उसको ऐसा लगता है कि ये मुझे डिस्टर्ब नहीं करे, तो हमने इतने छोटे बच्चे के हाथ में टेक्नोलॉजी अभी से दे दी है। अब उनकी क्या भूल है, वो ऐसे एरा में बड़े हुए हैं कि बचपन से ही उनके हाथ में टेक्नोलॉजी है। सो वो बैलेंस रखना, खाना खिला रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के साथ, आपको कुछ काम करना है तो आप उसको बिजी कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ, आपको सुलाना है तो टेक्नोलॉजी के साथ, फिर हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी से
3: दूर हो रहे हैं,
4: अडिक्ट हो गए हैं। अडिक्ट तो होंगे ही ना,
3: मतलब बच्चे दूर हो रहे हैं,
4: बच्चे हमारे से दूर हो रहे हैं, क्योंकि फिर उनको जो डोपामिन सेक्रेशन है, सेरोटोनिन है, वो वहां से मिलता है, कार्टून से मिलता है, वेब सीरीज से मिलता है, तो वो चीज उनको अट्रैक्ट करती है, फिर वो अडिक्ट हो जाता है।
3: अब वो अडिक्शन हो गया, अब मेरे बच्चे हैं, अब मुझे उसको दूर करना है, तो
4: पहली चीज स्टार्टिंग के ईयर्स में अगर आप छुड़वा सके तो बहुत अच्छा है, फिर बाकी जो जब बड़े हो जाते हैं और अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, आप इंस्पायर ही कर सकते हैं, आप इंस्पायर ही कर सकते हैं, बार बार उनके साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी लेट्स बिगिन एज अ फैमिली, फ्रेंड्स तो छोड़ें, फैमिली तो चार जने इकट्ठे बैठे टेबल पर और डिसाइड करें कि जब तक हम खाना खा रहे हैं हम फोन यूज नहीं करेंगे, और एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे को सुनेंगे, एक दूसरे को कॉन्शियसली सुनेंगे, घर में तो ट्राई करना शुरू करें। So that is how we can begin. It's baby steps. Anything, अगर वो चीज आपको लगता है एक चैलेंज हो गया है, so start taking baby steps और फिर चेंज आएगा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
1: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
2: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
3: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
4: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। सिस्टर श्रेया, मिलन गांधीनगर गुजरात से लिखते हैं कि कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हम पैसा, नौकरी और दुनियावी चीजों में इतने उलझ गए हैं कि असली जीवन जो शांति, करुणा, सही कर्म और परमात्मा से जुड़ने के लिए हैं, उससे दूर हो गए हैं। हम समझते हैं कि ध्यान और आध्यात्मिक जीवन जरूरी है, लेकिन व्यस्त जीवन शैली में ये संभव नहीं हो पाता। कृपया बताएं कि इसका समाधान क्या है।
2: हमने धर्म और कर्म को अलग कर दिया है
1: जी,
2: वो अलग नहीं है। इसीलिए जो शब्द अभी यूज होता है, अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी
1: जी,
2: क्योंकि वो चीज अलग है ही नहीं ना। हमें लगता है धर्म, हमने आधा घंटा पूजा पाठ करी, कोई सत्संग किया, वो धर्म है। फिर दिन भर में हम बहुत व्यस्त हैं, हमें कर्म करना है, हमें पैसा कमाना है, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है। पर वो कर्म हम कई बार गलत तरीकों से भी कर रहे होते हैं।
1: अच्छा,
2: किसी का नुकसान भी कर दिया, किसी को डांट भी दिया, किसी के प्रति क्रिटिकल भी हो गए, निंदा भी करी, नीचे गिराया, बहुत कुछ हमने किया, तो वो हमारा जो कौन से खाते में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, कौन से
1: लॉस में जाएगा।
2: तो वो धर्म को कर्म में लेकर ही तो आना था। आज वो कर्म क्या है, इसलिए कर्म नहीं कहना चाहिए, कर्म योग कहना चाहिए। सो एनीथिंग व्हिच इज डन राइट, वो पुण्य के खाते में जाएगा। तो धर्म आपको क्या सिखा रहा है, आप दिन भर कर्म करो, लेकिन ऐसा कर्म करो जो सबका भला हो, आपका भी भला हो, दूसरे का भी भला हो, और आप धन के साथ साथ दुआएं भी कमाएं। देखिए, धन बहुत जरूरी है, लेकिन किसके लिए, वस्तुओं के लिए
1: जी।
2: बिना धन के लिए तो आप कोई चीजें तो नहीं आ सकते, लेकिन उसकी वैल्यू कहाँ तक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जब नोट बंदी हुई तो जो नोट बंद हो गए, अभी उसका आपको ट्रक भर के भी दे दे,
1: ये लीजिए,
2: क्या फायदा। 1,000 का नोट है, आप उसको ट्रक भर के भी दे दे, क्या फायदा है। क्योंकि उस मनी की जो वैल्यू है, इफ इट कैन हेल्प यू बाय अ कमोडिटी, वो वस्तु के लिए है। पर उसको वस्तु तक रखे ना,
1: सही बात,
2: उसको वस्तु तक रखे, आप सोचे कि फिर वो धन आपको खुशी भी दे देगा, रिश्ते भी दे देगा और हेल्थ भी दे देगा, वो नहीं हो सकता,
1: नहीं हो सकता।
2: वो आपको मटेरियल बेनिफिट दे सकता है, मटेरियल कंफर्ट दे सकता है। तो दोनों को साथ चलाएं, धर्म को कर्म में लेकर आएं, हर कर्म को श्रेष्ठ बनाएं, कर्म योग करें, तो फिर आपको वो जीवन के अंदर कंटेंटमेंट एक्सपीरियंस होगी।
1: क्या बात है, मुझे तो कंटेंटमेंट, जब मैं इनका सवाल पढ़ ही रहा था आपके लिए, तो मेरी शायद फेवरेट कविता है, एक तरह से हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत प्यारी कविता है, कई बार कोट करता हूँ कि जीवन के आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं कि जीवन में जो बोला, सुना, माना, उसमें क्या भला बुरा। और उसके बाद जो प्यारी लाइनें हैं, बहुत खूबसूरत लाइनें हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा, जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा, मैं खड़ा हुआ हूँ दुनिया के इस मेले में, जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा, मैं खड़ा हुआ हूँ दुनिया के इस मेले में, हर एक यहाँ पर एक भुलावे में भूला, हर एक यहाँ पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी ही दे ले में, हर एक यहाँ पे अपनी भुलावे में भूला, हर एक लगा है यहाँ पे अपनी अपनी दे ले में, कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा, कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा, आ गया कहाँ, क्या करूं यहाँ, जाऊं किस जगह, फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया इस रेले में, क्या बाहर की ठेला पेली ही कुछ कम थी, ये बहुत खूबसूरत लाइन है, क्या बाहर की ठेला पेली ही कुछ कम थी, जो भीतर भी भावों का उहा पोह मचा, जो किया उसी को करने की मजबूरी थी, जो कहा वही मन के अंदर से उबल चला, जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कहीं ये सोच सकूं, जो किया कहां माना उसमें क्या भला बुरा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

इतना पसंद था ये गाना, इनफैक्ट अभी भी है, बट मेरे दो भाई यशराज मुखाटे एंड केतन सिंह हैव रूइंड इट फॉर मी नाउ। दैट वाज बेशरम रंग, इस हफ्ते गाना नंबर 7 पर। Truly one of the best songs this year. पठान के इस गाने ने पागलपन मचाया। It stayed on number one for so many weeks. लेकिन अब नई फिल्मों के आते खिसक रहा है थोड़ा थोड़ा। This week it's on number 7 from number 4 last week. And my name is Suren. And this is the Mirchi Top 20. And ये जो दो दोस्त हैं मेरे, केतन जो खुद एक रेडियो जॉकी रह चुका है, and यशराज मुखाटे, इन दोनों ने दिमाग में अब ये नया वर्जन डाल दिया है। इफ यू रिमेम्बर, मैंने बताया था कि बेशरम रंग की जो लिखावट है वो थोड़ी ओल्ड स्कूल है। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, एंड दीज टू डिसाइडेड दैट ये एक 60 के दशक का वर्जन बनाएंगे। एंड अगर रफी साहब इस गाने को गाते तो शायद ये कुछ ऐसा सुनाई देता।

I hate it so much that I actually love it. मतलब हंसी भी आ रही है और नाज भी है इन दोनों भाइयों पर. खैर आगे बढ़ना है और गाना नंबर 6 हमारा इंतजार कर रहा है. इट्स अ ब्रांड न्यू सॉन्ग. इट्स फ्रॉम मिस्टर पंजाबी अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म सेल्फी. गाने का नाम है कुड़िये नी तेरी. इट्स मेकिंग इट्स डेब्यू हियर ऑन नंबर 6 ऑन द मिर्ची टॉप 20 विद मी सुरेन. नंबर 6.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची
2: हेलो
3: सुमन जी गुड इवनिंग इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ। आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेन करी है?
2: हाँ जी हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी हेलो।
3: क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाते हैं तो स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3rd K 35/14A 1st फ्लोर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनसाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला,
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
3: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
2: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल
3: सुमन जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: क्या
3: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर मेरा मतलब है, अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं।
3: दोबारा कॉल करेंगे, आप क्या वक्त लिया? आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
9: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
10: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
11: Wow! Yahi to hai mera dream lehenga!
12: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
11: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
12: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
11: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
13: Oak Tree Road lo best diamond jewelry kosam search chestunnara Krishna Jewelers me exclusive diamond store.
14: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, mariyu stunning pendants. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.

0: ताज्जुब नहीं होगा अगर ये गाना नंबर वन तक जाए, बिकॉज ऑल्सो इट इज माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ द चार्ट्स, तेरे प्यार में बाय अरिजीत सिंह, फ्रॉम तू झूठी मैं मक्कार,
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉयज एंड गर्ल्स, फॉर दोस जिनको फिल्मों का ज्यादा आइडिया नहीं है, तो ये फिल्म तू झूठी मैं मक्कार डायरेक्ट की है मिस्टर लव रंजन ने, एंड लव ने जो चार फिल्म में इससे पहले डायरेक्ट की हैं, ऑल ऑफ देम फीचर्ड हिज फेवरेट पेयर कार्तिक आर्यन एंड नुसरत भरूचा। अब कार्तिक तो नेक्स्ट लेवल स्टार बन गया है, एंड सो इज नुसरत, सो लव ऑल्सो डिसाइडेड कि अब यार मैं बड़ी फिल्म बनाऊंगा, एंड तब तू झूठी मैं मक्कार हैपेंड। मिर्ची टॉप 20 पे आई एम सुरेन, एंड द वन थिंग दैट इज रियली अमेजिंग इज द न्यू पेयरिंग ऑफ द टू कपूर्स, रणबीर एंड श्रद्धा। दोनों फिल्म फैमिली से हैं, दोनों फैमिली फ्रेंड्स, दोनों के डैडीज अच्छे दोस्त, बट अब तक दोनों ने साथ में काम नहीं किया था, एंड द बेस्ट पार्ट they both actually look good together. But dono ko ek dusre ke sath film karna kya raas aaya, jaan lete hain.
2: Everybody knows that you know Ranbir is such a fabulous actor, and I've always admired his work, and ye experience karne ke liye on set with him bahut maza aaya, and he's really superb.
3: So I've known Shraddha since I guess she was born and I was born, because our parents are friendly, and so we've been friends for a long time. But working with her, I really realized that, you know, we share similar creative energies. I think she comes with the same kind of passion, dedication and fire, you know, to give her best. I think it is Love's genius that she casted both of us together. So thank you, Love.
4: Thank you.
3: I give you credit for this also.
0: I really like their chemistry and I hope it does work some magic. And kya hai ki Pritam Da ne jo gana banaya hai, uska zone, uski vibe ek aur gaane se kaafi milti julti hai. But usse pehle आपको बता दूं इस हफ्ते का गाना नंबर 3 कौन सा है।
5: तुम्हें जो पठान मेरी जान, महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान, उस पे मर मिट जाए।
0: अब मैं क्या कह रहा था कि ये जो गाना है तेरे प्यार में, इट डज साउंड लाइक अनदर सॉन्ग दैट आई रियली लव। जो फीलिंग, जो वाइब थी लव आजकल 2 के गाने में, आई फाउंड इट हियर एज वेल, एंड दैट इज व्हाई मेरे इस हफ्ते का पिक ऑफ द वीक है हां मैं गलत, वंस अगेन बाय अरिजीत सिंह एंड प्रीतम दा ऑन द मिर्ची डॉट 20 विद मी सुरेन।

0: इस गाने का ओरिजिनल 12 साल पहले ही तो आया था, इतनी जल्दी इतना पुराना थोड़ी ना हो सकता है कि इसका नया वर्जन निकालना पड़ जाए। प्रीतम दा को खुद ही के गाने रिहैश करने पड़ रहे हैं। मे बी ये मार्केट की डिमांड है, बट आई डोंट थिंक प्रीतम दा खुद ये करना चाहते होंगे। मिर्ची टॉप 20 पे इट्स मी सुरेन एंड कैरेक्टर ढीला है 2.0 इज द ब्रांड न्यू एंट्री ऑन द चार्ट्स एंड ये सीधा आया है नंबर 2 पर एंड दैट इज अनबिलीवेबल। और इस गाने की पॉपुलैरिटी के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है कार्तिक आर्यन की खुद की पॉपुलैरिटी, क्योंकि आजकल कार्तिक जो भी करता है वो सोना बन जाता है। एंड प्रीतम दा हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन मेनी हिट सॉन्ग्स इन कार्तिक्स 10-year-old करियर, और ये बात कार्तिक खुद एक्नॉलेज करता है।
1: प्रीतम दा का जो म्यूजिक हमेशा रहा है, बीट एनी फिल्म ऑफ माइन, पिछले जो भूलभुलैया 2 आई थी या फ्रेडी भी आई थी, उन दोनों के भी गाने काफी चले थे, फ्रॉम द टाइटल ट्रैक टू काला जादू लास्ट ईयर, दिस ईयर ऑल्सो अभी ये एक एक करके गाने और खुलने वाले हैं। इसमें मुंडा सोना हूँ अभी काफी चल रहा है, एंड रिसेंटली मेरे सवाल का जो रोमांटिक ट्रैक है, अगेन इट्स ऑन मतलब मैं ट्रेंडिंग लिस्ट बेसिकली, सो दीज आर ऑल वर्किंग एंड सो आई हैव बीन रियली लकी विद म्यूजिक। एंड म्यूजिक काफी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एस्पेक्ट होता है एक एक्टर के करियर को, एक अलग सा उसको एक हीरोइज्म दर्शाने में या फिर उसको एक उस लेवल पे पहुंचाने के लिए। सो आई हैव बीन बीट सोनू टीटू का म्यूजिक, बीट भूल भुलैया का म्यूजिक और बीट एनी अदर फिल्म ऑफ माइन, ये म्यूजिक हैज ऑलवेज बीन लुका छुपी। तो आई थिंक ये फिल्म में भी वही हो रहा है शहजादा में, एंड थिएटर्स में खींचती है ऑडियंस को ये, तो वो बहुत जरूरी है।
0: भाई को तो प्रीतम दा का साथ भी मिल गया है, विच मीन्स ये एक सुपरस्टार होने का सबसे बड़ा सबूत है। रणबीर से पूछ के देखो, वो भी यही बताएगा। ऑलराइट, सो नाउ द नंबर 1 सॉन्ग मिर्ची टॉप 20 पे वी हैव अ न्यू किंग। जिस गाने ने पिछले हफ्ते डेब्यू किया नंबर 3 पे, इस हफ्ते आ गया है सीधा नंबर 1 पे, राइडिंग द नॉस्टैल्जिया एक्सप्रेस। तनिष्क बागची की एक और उपज मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फ्रॉम अक्षय कुमार एंड इमरान हाशमीज अपकमिंग फिल्म सेल्फी। सो बेसिकली दो गाने ऑन द टॉप 2 पोजीशंस जो है पुराने गाने। Talks about your taste more than mine. Check it out. You're on the Mirchi Top 20. I am Surin.
2: Number 1.

0: आपको क्या लगा हम भूल गए?
1: इंटरेस्टिंगली उदित जी ने अपने हिस्से तो फिर गाए हैं बट अभिजीत दा के पुराने हिस्से रिटेन किए गए हैं। मे बी ना कर दी उन्होंने, मे बी डिडंट केयर। इस हफ्ते का नंबर वन गाना मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, लेकिन इस शो मिर्ची डॉट 20 का खिलाड़ी अब आपको कहता है बाय बाय। आई बी बैक सेम प्लेस सेम चैनल सेम टाइम। मेरे डीएम्स में स्लाइड करने के लिए सुरेन सुरेन ऑफिशियल इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सुरेन ओवर एंड आउट।
2: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: It's 10:30 AM Mirchi time check.
4: Brought to you by RK Jewels. RK Jewels, jewelry mein sirf ek hi naam, RK Jewels. Best quality, best price.

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: I don't need to tell you. New Yorkers are paying more for everything. Rent, utilities, groceries, every single month. The office that's supposed to protect us, it's on the sidelines. I'm Raj Goyal. As an ACLU lawyer, I fought for the people against powerful interest every single day. Now I'm going to be your affordability watchdog. I'll take the pension fund out of the greedy hands of Wall Street and put it back into affordable housing. Holding utility companies accountable and auditing waste and fraud.
4: Raj Goyal, affordability watchdog for Comptroller.
5: Paid for by Raj Goyal for New York State Comptroller.
6: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन। अच्छा।

0: Milchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La virpa, la burka.
0: Milchi, burka.
2: हेलो
3: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
3: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
2: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
3: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
2: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
3: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
2: बोलो।
3: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
2: कौन सा?
3: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
2: अच्छा।
3: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
2: कच्चे तेल से गाड़ी चलाऊं?
3: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
2: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
3: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
2: कुकर? हाँ कुकर तो है।
3: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
2: अच्छा।
3: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
2: सोडा,
3: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
2: लहसुन? यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना, खाना बना रहा है?
3: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
2: मतलब उसको पकाऊं?
3: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
2: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क, कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
3: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
2: नहीं नहीं कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
3: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
2: चल जाएगी?
3: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
2: अबे कौन बोल रहा तू?
3: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
2: अरे यार जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
9: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे।
10: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा।
11: अरे मुझे कोई ट्रैक करे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
8: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One इज एन ऑल इन वन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सुइट, जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। यस योर एंटायर बिजनेस, Zoho One इज इजी टू यूज, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One। गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/one।
12: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
13: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
6: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
14: तेरा क्या होगा कालिया?
15: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
14: अब मिर्ची खा।
16: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
1: मुझों को थोड़ा राउंड घुमा के
0: अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2. इट्स हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
4: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
6: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
7: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
6: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
8: Isse apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
6: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
9: एक ही होता है।
6: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
5: नो
0: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
6: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
7: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
8: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. It's hot.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
7: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इम्प्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
4: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
8: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
8: अब मिर्ची खा।
10: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी, हेलो।
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है, सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 35/14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनशाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है।
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकता हूँ मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
3: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
2: आपसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल।
3: सुमन जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: क्या
3: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं,
3: दोबारा कॉल करेंगे। आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
6: जीवन में कई सिचुएशन में लड़ी पड़वू अने कई जगह नतमस्तक थई जवू ए समझवानी खूब वधारे जरूर छे। हूँ तमने महाभारत माथी एक एग्जाम्पल आपू। द्रोणाचार्य ना मृत्युना पछी अश्वत्थामाए नारायण अस्त्र नो उपयोग कर्यो हतो। હવે નારાયણ અસ્ત્ર આ એટલું પાવરફુલ અસ્ત્ર હતું કે જેના સામે કોઈ પણ ટકી ના શકત, પાંડવોની આખી સેના એક જ વારમાં નેસ્તો નાબૂદ થઈ જાત। હવે કૃષ્ણ ભગવાનને આ વાત ખબર હતી। કૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું કે જો આના સામે ટકવું હોય, નારાયણ અસ્ત્રથી બચવું હોય તો એક જ સોલ્યુશન છે, આની સામે નતમસ્તક થઈ જાઓ, પ્રણામ કરી દો ભૈયાને। આની સામે જો લડત આપશો તો મેળ નહીં પડે, બહુ પાવરફુલ અસ્ત્ર છે। પાંડવોની આખી સેના આ અસ્ત્રના સામે નતમસ્તક થઈ ગઈ, બધાએ પ્રણામ કરી લીધા, યુદ્ધભૂમિના ઉપર બધા આડા પડી ગયા, સૂઈ ગયા, સિવાય કે એક વ્યક્તિ। એ વ્યક્તિ હતો ભીમ। ભીમે કહ્યું કે ભાઈ આ શું નારાયણ અસ્ત્ર ને આ બધું, મારા બળના સામે આ તો કઈ જ નથી, હું લડત આપીશ આને, હું કોઈ પ્રણામ કરવાનો નથી, હું નતમસ્તક થવાનો નથી। નારાયણ અસ્ત્ર ફૂલ સ્પીડથી, ફૂલ પાવરથી ભીમના તરફ આગળ વધી રહ્યું હતું। કૃષ્ણ ભગવાન વારંવાર કહી રહ્યા હતા કે ભીમ નતમસ્તક થઈ જા, નહીં મેળ પડે। કૃષ્ણ ભગવાનને ખબર હતી કે ભીમની તાકાતની કોઈ જ વિસાત નથી આ અસ્ત્રના સામે। કૃષ્ણ ભગવાન તાત્કાલિક દોડીને જાય છે અને ભીમને નીચે ઝુકાવી દે છે, ભીમને આડો પાડી દે છે। જેમ કૃષ્ણ ભગવાન એવું કરે છે, કોઈ એક વ્યક્તિ પણ યુદ્ધભૂમિ ઉપર એવું નથી હોતું કે જે નારાયણ અસ્ત્રને પ્રણામ ના કરી રહ્યું હોય। બધાને પ્રણામ કરતા જોઈને નારાયણ અસ્ત્ર ફરીથી અશ્વત્થામાના પાસે જતું રહે છે અને પાંડવોની સેના બચી જાય છે। સમજવા જેવી વાત એ જ છે કે કઈ જગ્યાએ લડત આપવી, ક્યાં લડી પડવું, ક્યાં તલવાર ખેંચવી અને ક્યાં પ્રણામ કરી લેવા, એ સમજવાની ખૂબ વધારે જરૂર છે। જો કૃષ્ણ ભગવાન પણ આ જ સ્ટ્રેટર્જી અપનાવતા હોય તો હું અને તમે તો માણસ છીએ। ઓફિસમાં કોની સામે લડવું અને કોની સામે નતમસ્તક થવું એ સમજાય એવી આશા। યુ આર લિસનિંગ ટુ મિર્ચી, હું છું તમારો કૃતાર્થ.
0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
9: I am not going to bed with you ever again.
8: But why? What did I do?
9: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
8: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
9: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
8: Yes, yes, yes, come soon. Honey!
9: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
10: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
11: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
12: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
11: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
12: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन.
13: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
14: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
15: तेरा क्या होगा कालिया?
16: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
15: अब मिर्ची खा.
17: Radio Mirchi, it's hot.

0: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
1: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
0: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
1: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
4: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
6: एक ही होता है।
4: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

तेरा चले तो ले ले पूरा दिन, हो तैयार तो घंटे न गिन, मैं हूँ यही एच सर्विस, टेक योर टाइम शॉरी यू डिजर्व इट, हाथ मेरा थाम, लेट मी मेक यू स्माइल, आई लाइक योर स्वैग, यू लाइक माय स्टाइल, देती मुझे विंडो सीट खुद लेती आ, जब भी होती लो तो मेरा

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana. ¡Cabana! ¡Murga, murga! ¡La vida para la murga!
0: ¡Mirchi, murga!
2: ¿Aló?
3: ¿Aló, Manoj ji, se baat kar sakta hu main?
2: Haan ji, bol raha hu, Manoj.
3: Haan, Manoj ji, main Yadvar bol raha hu. Oil se ye petrol ki problem aapko bhi ho rahi hai kya?
2: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से तीन जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
3: अभी एक महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पे जान। ये एक महीने तक कम से कम।
2: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
3: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
2: बोलो।
3: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
2: कौन सा?
3: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
2: कच्चा? अच्छा।
3: हाँ, तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
2: कच्चे तेल से गाड़ी चलाऊं?
3: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
2: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
3: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
2: कुकर? हाँ कुकर तो है।
3: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। हाँ कुकर में जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
2: अच्छा।
3: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
2: सोडा,
3: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
2: लहसुन? यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना, खाना बना रहा है?
3: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
2: मतलब उसको पकाऊं?
3: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
2: ऐसे कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा, ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
3: यह काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है।
2: नहीं नहीं, कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
3: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
2: चल जाएगी?
3: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
2: अबे कौन बोल रहा है तू?
3: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है, घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
2: अरे यार ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Oh no!
8: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
9: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
11: Listener MA, back to back gana sunega.
12: Back to back gana sunega.
11: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
3: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
3: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
4: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.

0: Mirchi.
1: Iscaba la puscaba la sacaba la. La burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी, हेलो।
3: क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है, सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3rd K 35 14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनसाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला,
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम, ये इंटरनेट का कनेक्शन है। आप मेरे को क्यों बता रहे हो, ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
3: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
2: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो, ठीक करने के लिए डिटेल।
3: सुमन जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: क्या
3: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है, आप अगर मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं,
3: दोबारा कॉल करेंगे। आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: इट्स हॉट।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
11: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, अ 1000-year-old ट्रेडिशन ऑफ खानदानी शेफ्स रेसिपीज, comes the naan. The same traditional taste, flavor and freshness guaranteed. Deep cow to jano.
12: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
13: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
14: तेरा क्या होगा कालिया?
15: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
14: अब मिर्ची खा।
16: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
8: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
7: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
9: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
10: एक ही होता है।
7: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
4: Listener, mein back to back gana sunega.
5: Back to back gana sunega.
6: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot

0: आदित्य रिखारी रैबिट और कुटले खां का गाना इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग. गाने का नाम है ए अजनबी. पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप हो गए. दिस वीक ऑन गाना नंबर 9.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: यू आर लिस्टिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक. गाना नंबर 9 पर हमने आदित्य रिखारी एंड कुटले खां को एक गाने में सुना. आदित्य रिखारी हु इज द पॉप सेंसेशन, कुटले खां राजस्थान के फोक म्यूजिक को रिप्रेजेंट करते हैं. ये दो इतने अलग दुनिया के आर्टिस्ट सिर्फ कोक स्टूडियो ही एक गाने में ला सकता है. काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो एक नई एंट्री है एंड दिस इज अ डेब्यू जो हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे बिकॉज अदनान सामी इज बैक विद अ न्यू सॉन्ग. अदनान सामी के गानों के बारे में हम जैसे ही सोचते हैं तो वो पावरफुल रोमांटिक बैलेड्स याद आते हैं.

0: बट जो उनका नया वाला गाना है इट्स अ हाई एनर्जी पॉप प्रोडक्शन. रस्टिक इंडियन टेक्सचर्स भी हैं, थोड़े राजस्थानी इन्फ्लुएंसेस भी हैं, बट इट्स ऑल दैट अदनान सामी इज वेरी वर्सेटाइल. गाने का नाम एक्चुअली लिपस्टिक है. पूरा गाना हम अभी आपके लिए प्ले करने वाले हैं. दिस सॉन्ग इज ट्राइंग टू ब्रेक द स्टिग्मा अराउंड लिपस्टिक, स्पेशली हमारी इंडियन सोसाइटी में जहां थोड़ी बोल्ड लिपस्टिक लगा लिया, रेड शेड ज्यादा रेड हो गया तो ऑफिस में ही चार लोग टोक देते हैं. गाने की जो म्यूजिक वीडियो है फीचर्स वुमेन ऑफ ऑल जेनरेशंस, ओल्ड women, small town characters. You will see someone you know in this music video. But the best part is how Adnan Sami is fully playing a character in the video. Expressive styling, very transformed look. Unke surme pe dhyan dena. But gana unhone bahut fun banaya aur bahut waqt ke baad hum ek aisa high peppy pop gana sun rahe hain from Adnan Sami. Apne radio sets ki volume bada lijiye. Naya Navela gana debut kar raha hai seedha on gana number 8. Adnan Sami ki composition, Adnan Sami की आवाज में, महिमा भारद्वाज के लिरिक्स. गाने का नाम है लिपस्टिक. इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 8. यू आर लिस्टनिंग टू गाना इंडिया टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 8.

0: Mirchi. Iscaba la puscaba la sacaba la
1: Rambala.
0: Murga, murga. La virtua la murga.
1: Mirchi, murga.
2: Hello? Hello?
3: Sir, very good evening, man. Thanks a lot.
2: हाँ बोलिए
3: सर. I'm so sorry sir, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
2: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं, क्या बात
3: है सर. I'm so sorry, पूरा बता
2: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया
3: सर? आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
2: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
3: आई एम सो सॉरी सर, ऐसे ही कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
2: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
3: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
2: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
3: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
2: मैं पागल पागल है क्या?
3: अब तो देने पड़ेंगे सर.
2: हेलो.
3: अब तो फंस गए देने पड़ेंगे.
2: कौन बोल रहा है? विपिन?
3: नहीं सर, अब तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
2: अब
3: तो फंस गए सर.
2: हेलो
4: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
2: उसके पैसे को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
4: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
2: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
4: हाँ जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर. मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Kisi zamane mein maa haathon se ghisti, pyar se kootti, muskurakar peesti. Apne ghar ke aangan mein din bhar un masalon ko sehlaye, khushiyon ke swaad chakhti. वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी. दीप, खाओ तो जानो.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन.
10: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
12: I don't need to tell you, New Yorkers are paying more for everything. Rent, utilities, groceries, every single month. The office that's supposed to protect us? It's on the sidelines. I'm Raj Goyal. As an ACLU lawyer, I fought for the people against powerful interest every single day. Now I'm going to be your affordability watchdog. I'll take the pension fund out of the greedy hands of Wall Street and put it back into affordable housing. Holding utility companies accountable and auditing waste and fraud.
13: Raj Goyal, affordability watchdog for Comptroller.
14: Paid for by Raj Goyal for New York State Comptroller.
15: Tera kya hoga, Kalia?
16: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
15: Ab, mirchi ka.
17: Radio Mirchi, it's hot.
18: Ghana Indie Top 10.
19: Kanika ke saath on Mirchi.

0: मिट्टर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, मिट्टर और एंड स्वरा वर्मा की आवाज, गाने का नाम है शीशा। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना दिलजीत दोसांझ का गाना डीलर, पिछले हफ्ते से 1 पोजीशन नीचे ड्रॉप करके ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi जहाँ हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का countdown हम आपके लिए लेकर आते हैं। अभी के अभी कनेक्ट करो, फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKaneka on Instagram। कोई गाना शेयर करना हो, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। There are some artists जो सिर्फ गाने नहीं बनाते हैं, वो प्रॉपरली अपने गानों से ऑडियंस की अटेंशन को होल्ड करना जानते हैं। And one of such artists is Himesh Reshamya. He's back with a new song. Unke naye gaane ka naam hai Sharab. I really think Himesh could have chosen some other word for the song. Mujhe thodi problem hai. Lekin meri is problem se mujhe is gaane ke baare mein kya feel hota hai, wo change nahi hota. Interesting baat to ye hai that this song is absolutely through and through Himesh, but also sounds very new. Wahi larger than life energy hai. Kaafi dramatic sa romance hai. Ek instantly pakad mein aa jaane wala hook. But there is some twang in the song. That Rajat Nagpal effect आपको सुनाई देगा, जैसे कि किसी गाने को एकदम ग्लॉसी कोट कर दिया है। राणा सोतल के लिरिक्स हैं, द वीडियो फीचर्स मनुषी चिल्लर, सो द ओवरऑल पैकेज इज इनक्रेडिबल। इन फैक्ट आई वुड गिव थैंक्स टू माय प्रोड्यूसर अश्काय हु मेड मी सी द म्यूजिक वीडियो, एंड देन मेरा थोड़ा सा ओपिनियन इस गाने के बारे में बदला, बिकॉज जब मैंने सिर्फ ऑडियो सुना आई थॉट यार ये गाना कैसे हिमेश के फैंस को पसंद आएगा, बट देन दैट्स व्हाट हिमेश रेशमिया डज, किसी ना किसी तरीके से हमारा अटेंशन ग्रैस्प कर लेते हैं। एंड आई स्वेयर जब मैंने म्यूजिक वीडियो के साथ ये गाना सुना तो मैंने वापस रिपीट किया और वापस म्यूजिक वीडियो देखा। चाहे आप सीरियसली सुनो, नॉस्टैल्जिक होके सुनो, आयरोनिकली सुनो, यू विल टॉक अबाउट हिमेश रेशमिया एंड हिज न्यू सॉन्ग। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। हिमेश रेशमिया का गाना, रजत नागपाल, राणा सोतल की कॉम्पोजिशन, लिरिक्स, गाने का नाम है शराब। इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: हिमेश रेशमिया की आवाज में दैट वॉज शराब ऑन आर स्पेशल गाना स्पॉटलाइट। अश्काई और मैं बेट कर रहे हैं दैट ये गाना कब डेब्यू करेगा, अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते। मेरे को लगता है कि ये गाना नंबर 5 से 7 के बीच में डेब्यू करेगा। व्हाट डू यू थिंक? If you want to predict, at RJ Kanika पर आके मुझे बताओ। Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी। दिलजीत दोसांझ सिया का गाना, गाने का नाम है रांझा। पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार, रांझा is playing right next for you on गाना नंबर 5। You are listening to गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। Enjoy।
1: Number 5।

0: नौजला इक्की का गाना फ्रॉम पी पॉप कल्चर 25 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बॉयफ्रेंड इज ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका, दिस इज गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना है, कोई बातें बतानी है, बिंदास आके हिट मी अप। आई ट्रूली रियली जेन्युइनली आई स्वेयर प्रॉमिस आई बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर मैं 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने आपके साथ शेयर करती हूँ। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज

गाने का नाम है तेरा चेहरा बाय द वन एंड ओनली अदनान सामी। ये गाना साल 2002 में रिलीज हुआ था, अदनान सामी की एल्बम तेरा चेहरा का ही पार्ट है। म्यूजिक खुद अदनान ने कंपोज किया था, लिरिक्स समीर के हैं एंड इस गाने की वीडियो में है रानी मुखर्जी। उस साल की सबसे सक्सेसफुल पॉप एल्बम्स में से एक थी तेरा चेहरा। आई रिमेम्बर इस एल्बम के थ्रू ही हम अदनान सामी की दुनिया से इंट्रोड्यूस हुए थे एंड कुछ इतनी मैसिव कोलैबोरेशंस थे इस एल्बम में विद रानी मुखर्जी, अमिताभ बच्चन। बट जो ये गाने हमें आज याद हैं, ना ही कोलैबोरेशंस की वजह से हैं, ना ही उन गाने म्यूजिक वीडियोस की वजह से, इट्स बिकॉज ऑफ द म्यूजिक, इट्स बिकॉज ऑफ द कॉम्पोजिशन। गाना नहीं भाई, अदनान सामी पूरा माहौल बनाते थे। उनका हर गाना एक मिनी सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लगता था। पियानो, स्ट्रिंग्स, वो स्ट्रेच्ड आउट लॉन्गिंग इन हिज वॉइस, ऐसा लगता है कि बस गाना आपके लिए ही गा रहे हैं। स्पेशली द सॉन्ग तेरा चेहरा, द लिरिक्स, ये जमीन रुक जाए आसमां झुक जाए, इतना ड्रामा, उफ। एंड अदनान सामी की वॉइस जस्ट टेक्स इट टू द नेक्स्ट लेवल, चीजी एंड हाउ। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, अदनान सामी एट हिज अल्टीमेट बेस्ट, साल 2002 का गाना अदनान सामी की आवाज में, दिस इज तेरा चेहरा ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। बंदी का नाम है आरजे कनिका, एंजॉय।

मैन ओ मैन, तेरा चेहरा इज वन ऑफ दोज सॉन्ग्स दैट नॉस्टैल्जिया नहीं बल्कि एक पूरा जमाना याद आ जाता है. अदनान सामी की आवाज में दैट वॉज तेरा चेहरा ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. एट आरजे कनक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ एंड दिस इज वेयर गाने शेयर करने की बारी आती है. 90s या 2000s का वो कोई भी आइकॉनिक इंडी पॉप गाना जिसको आज भी आप सुन के फुल नॉस्टैल्जिक हो जाते हो, वेयर गाने शेयर करने की बारी आती है. 90s या 2000s का वो कोई भी आइकॉनिक इंडी पॉप गाना जिसको आज भी आप सुन के फुल नॉस्टैल्जिक हो जाते हो, हम

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
1: अब मिर्ची खा.
3: Radio Mirchi, it's hot.
4: Ghana Indie Top 10.
5: Kanika ke saath on Mirchi.
6: Mirchi sun rahe hain aap. This is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Connect with me Instagram par jao. Mera handle is @RJKanika. The show is all about the hottest pop music of the week. Now, Ghana number 10 se Ghana number 2 ka safar hum pura kar chuke hain. Before I take you to the numero uno song of the week, a quick recap karte hain right from the top. इस हफ्ते गाना नंबर 10 पर था मीका और दया द रैपर का छोरी. देन आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खा का ए अजनबी ऑन गाना नंबर 9. गाना नंबर 8 पे डेब्यू किया अदनान सामी के गाने लिपस्टिक ने. दिलजीत दोसांझ का डीलर ऑन गाना नंबर 7. देन मिट्टा रौर का शीशा ऑन गाना नंबर
7: 6.
6: दिलजीत एंड सिया का रांझा ऑन गाना नंबर 5. करण औजला 21-25 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार बॉयफ्रेंड दिस वीक ऑन गाना नंबर 4. संजू राठौर का बैंग गर्ल्स ऑन गाना नंबर 3. फिर हमने सुना अनूप जैन का अर्ज किया है ऑन गाना नंबर 2.
8: कायर जो थे वो शायर बने, अब क्या क्या करें इश्क में.
6: It's time for the numero uno song of the week, yani is hafte ka gana number 1. This song is absolute treat. What a beautiful mix in this countdown. Gaane ka naam hai Bairan, ek haryanvi song jo mujhe pata hai ki aapke Instagram ke har teesre scroll mein aap ye gana sun rahe hain. Banjare ki composition, unhi ke lyrics, unhi ki awaaz. Bairan is playing right next for you on gana number 1. You are listening to Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.
9: Number 1.

0: na Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: It's 6 p.m. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
2: Surin ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
3: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
4: हर फ्राइडे बॉलीवुड डिसाइड करता है कि इस हफ्ते कौन सी कहानी ट्रेंड करेगी, कौन सा हीरो मास्क लगेगा, कौन सा ट्रेलर इंटरनेट तोड़ देगा एंड कौन सा गाना शादियों में बजेगा। लेकिन असली सवाल हमेशा सेम रहता है, इस शोर में क्या टिकने वाला है? क्योंकि हाइप तो बहुत चीजों की बन जाती है लेकिन लेगेसी बहुत ही कम की होती है। एंड इस वक्त हिंदी सिनेमा एक अजीब से फेज में है। सुपरस्टार्स अब भी बड़े हैं लेकिन ऑडियंस उनसे भी बड़ी हो चुकी है। हम इंस्टेंटली जज करते हैं, इंस्टेंटली ट्रोल करते हैं, इंस्टेंटली वर्शिप करते हैं। एक रील करियर बना देता है और एक फ्राइडे नैरेटिव बदल देता है। लेकिन फिर भी हर हफ्ते कुछ गाने ऐसे आते हैं जो शोर को काट देते हैं, कुछ फिल्म्स जो सिर्फ चलती नहीं कल्चर बन जाती हैं, एंड कुछ आवाजें जो प्रूव करती हैं कि बॉलीवुड अभी भी दिल से जिंदा है। तो चलो इस हफ्ते के बिगेस्ट सॉन्ग्स, बिगेस्ट स्टोरीज और बिगेस्ट बॉलीवुड पल्स को डीकोड करते हैं। दिस इज द मिर्ची टॉप 20 एंड आई एम योर होस्ट सुरेन सुंदरम। एंड गाड़ी शुरू होती है विद द मोस्ट डोमिनेंट फिल्म एंड उसका ये डोमिनेंट टाइटल ट्रैक। आपने सुना है, बहुत बार सुना है।
5: नंबर 20।

बॉलीवुड में अगर किसी कंपोजर ने हमें ये सिखाया है कि म्यूजिक सिर्फ सुना नहीं, फील किया जाता है, then it has to be A.R. रहमान। लेकिन रहमान साहब का म्यूजिक आजकल पहले जैसा इंस्टेंट हिस्टेरिया क्रिएट नहीं करता, और शायद वो प्रॉब्लम नहीं है, शायद वो डिजाइन है। क्योंकि रहमान साहब के गाने फास्ट फूड की तरह, बर्गर्स पिज्जाज की तरह बिल्कुल नहीं होते। दे आर लाइक स्लो पॉइजन। पहली बार सुनो कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, दूसरी बार सुनो तो इंट्रीगिंग लगते हैं, और फिर एक दिन अचानक गाना आपके अंदर घर बना लेता है। रहमान साहब मेलोडी को स्पून फीड नहीं करते, वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। टेक्सचर्स, साइलेंसेस, ट्रेन साउंड, स्पिरिचुअलिटी, लॉन्गिंग, और इसीलिए उनके गाने वायरल कम होते हैं, डिस्कवर ज्यादा किए जाते हैं।

0: इनिशियली लोग बोल रहे थे ये तो बहुत डीप है, आज ये एक इमोशनल एंथम बन गया है। और अब मस्कारा को देखो, फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, इम्तियाज अली, दिलजीत दोसांझ, रहमान साहब, इरशाद कामिल, ये कोई लाउड चार्ट बस्टर नहीं है, ये वो टाइप का गाना है जो शायद 3 महीने बाद सडनली आपको हिट करेगा। और ऑनेस्टली मुझे लगता है बॉलीवुड का नेक्स्ट बिग म्यूजिक ट्रेंड यही होने वाला है, द स्लो बर्न एल्बम्स, एल्बम्स जो पहले ग्रो करती हैं और फिर एक्सप्लोर करती हैं। एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ विद चांद मेरा दिल। पहले लोग बोल रहे थे यार अच्छी एल्बम है, अब हर हफ्ते एक नया गाना इमर्ज हो रहा है और इस वक्त द लेटेस्ट वन इज मेकिंग सीरियस नॉइज। फ्रॉम चांद मेरा दिल, कंपोज बाय सचिन जिगर, राघव चैतन्य और जुनीता गांधी की आवाज में, दिस इज खासियत, डेब्यूइंग ऑन नंबर 18।
1: नंबर 18।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
1: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
2: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
1: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
2: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
1: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
2: बोलो।
1: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
2: कौन सा?
1: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
2: अच्छा अच्छा।
1: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
2: कच्चे तेल से गाड़ी चलाऊं?
1: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
2: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
1: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
2: कुकर तो है।
1: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। कुकर में जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
2: अच्छा।
1: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
2: सोडा,
1: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
2: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना खाना बना रहा है?
1: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
2: मतलब उसको पकाऊं?
1: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
2: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क, कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
1: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
2: नहीं नहीं कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
1: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
2: चल जाएगी?
1: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
2: अबे कौन बोल रहा है तू?
1: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
2: जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए Lion Mortgage. The king of mortgage industry.
7: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
5: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
8: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jaano.
9: Did you know many communities across NJ-12 feel underrepresented in Washington? Now, NJ-12 has a rare open seat opportunity that may come only once in decades. Sujit Singh is running for the Democratic nomination for Congress in NJ-12. Rooted in NJ-12 for the past 15 years, Singh earned the trust of more than 5,000 residents in last November's election. Sujit believes every community deserves a voice in Washington. Please vote for Sujit Singh in this Democratic primary. Return your mail-in ballot if received. Early voting, May 26th through May 31st. Election June 2nd. Learn more at singforcongress.org. Paid for by Sujit Singh for Congress.
10: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
11: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
10: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
12: Isse apni jeb mein rakh le Peter. Ab ye taala main teri jeb se chabi nikal kar hi kholunga.
10: Moral of the story, number 1 sirf ek hi hota hai. Ek hi hota hai. जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट
13: रेडियो मिर्ची। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
14: नंबर 17
15: भूल के

जाइए सजना उस फिल्म से है जो आपको OTT पे दिखने वाली है वेरी वेरी सून, धुरंधर 2 इज कमिंग। और ऑनेस्टली अगर आप 2026 में म्यूजिक इंडस्ट्री को समझना चाहते हो तो चार्ट्स मत देखो, इंस्टाग्राम खोलो, क्योंकि आजकल गाने हिट रेडियो पे नहीं रील्स पे दोबारा पैदा हो जाते हैं। कभी कोई 20 सेकंड का हार्ट ब्रेक एडिट सोशल मीडिया पे डालता है या डालती है और अचानक एक पुराना गाना फिर से दुनिया का फेवरेट इमोशन बन जाता है।

और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, जेंजी को नॉस्टैल्जिया भी चाहिए मगर बिना उस जमाने को जिए। चिट्ठियों कहाँ सुनी है, बिकम्स द न्यू ब्लॉकबस्टर मोमेंट। 90s और अर्ली 2000s का म्यूजिक तो स्पेशली अब सेकंड इनिंग्स खेल रहा है, क्योंकि उस वक्त मेलोडीज बनती थी, कंटेंट नहीं। और बॉलीवुड ऑब्वियसली इसे नोटिस कर रहा है, इसलिए हर दूसरी फिल्म एक पुराने गाने को नए पैकेजिंग में लाने की कोशिश कर रही है। समटाइम्स दिस वर्क्स, समटाइम्स हमारी मेमोरीज खराब होती है। एंड अब जो गाने आ रहे हैं उनमें एक वाइब तो है, देयर इज एन ओल्ड स्कूल स्वैगर, देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ नॉस्टैल्जिया, थोड़ा नया तड़का है, लेकिन जो अगला गाना है ना, इट्स नॉट वर्किंग दैट मैजिक फॉर मी। Maybe because the movie has not gotten me excited. Gaana number 15 is hafte on the Mirchi Top 20 is the reimagined Roop Di Rani from Pati Patni aur Vodo. Number 15.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती. वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी. दीप, खाओ तो जानो.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
4: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
6: नमस्ते इस्लाम एंड सत श्री अकाल भाई और बहनों. आई एम सुजीत सिंह रनिंग फॉर कांग्रेस इन NJ12. ए हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग योर वॉइस टू वाशिंगटन. विजिट singforcongress.org एंड गेट एंगेज्ड.
7: June 2nd, 2026. अर्ली वोटिंग डेट्स मई 26 टू मई 31st. सुजीत सिंह इज द चेंज वी नीड.
6: रेड फॉर बाय सुजीत सिंह फॉर कांग्रेस.
8: Tree Road लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तुन्नारा कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर.
9: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सॉलिटेयर्स, नेकलेसेस, रिंग्स, मरियू स्टनिंग पेंडेंट्स. कृष्णा ज्वेलर्स, ओक ट्री रोड, ईसलिन.
10: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा. Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's on.

0: बॉलीवुड का मूड कितनी जल्दी स्विच होता है। अभी जो गाना आपने सुना प्रेम की लीला फिल्म कृष्णावतारम, जिसे गाया है श्रेया घोषाल और जावेद अली ने। ट्रेडिशनल कॉम्पोजिशन है, ओल्ड स्कूल डिवोशन, नो ईडीएम ड्रॉप्स, ना कोई फोर्स्ड कूलनेस, बस सुर हैं, भाव हैं और सिंसियरिटी है। एंड देखो, ऑडियंस ने उसे सीधा दिल में जगह दे दी। डेब्यू किया इस गाने ने नंबर 14 पर, और शायद इसीलिए म्यूजिक का साइंस अब पहले से ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है, क्योंकि कब क्या कनेक्ट कर जाए नोबडी नोज एनीमोर। और इस साल का सबसे बड़ा सरप्राइज मेरे लिए था कॉकटेल का वो गाना जब तलक। यार जरा सोचो, अरिजीत सिंह, प्रीतम दा, अमिताभ भट्टाचार्य, एंड देन यू गॉट शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना एंड कृति सैनन। ये लाइनअप देख के तो लगता है कि गाना चार्ट पे आएगा नहीं, सीधा कब्जा कर लेगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। गाना आया तो सही, लेकिन इम्पैक्ट नहीं बना। इनफैक्ट टॉप 10 तक भी नहीं पहुंच पाया, और क्वाइटली इस काउंटडाउन से एग्जिट मार चुका है। और शॉक इसलिए भी ज्यादा लगता है क्योंकि शाहिद और प्रीतम दा का म्यूजिकल पार्टनरशिप तो हिस्टोरिकली लीथल रहा है।
1: साड़ी के पाल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे।
0: ये वो कॉम्बो है जो फुल मैडनेस को भी एक म्यूजिकल इवेंट बना देता था। इसके बाद जरा सा मूड स्विच कर लो,

हार्ट का पानी। एंड सडनली वो सेम डुओ हार्ट ब्रेक को इतना सॉफ्ट बना देता है कि आदमी खिड़की के बाहर देखना शुरू कर देता है, वो भी बिना किसी रीजन के। एंड देन ऑफ कोर्स यू गॉट दिस सॉन्ग।

बस यार ये गाना तो कल्चरली इमॉर्टल है, ऐसे गाने रिलीज नहीं होते, अडॉप्ट किए जाते हैं। इसलिए जब तलक का इतनी जल्दी फेड हो जाना जेन्युइनली अनएक्सपेक्टेड था एंड मेरे लिए काफी शॉकिंग भी। लेकिन फ्रीदंदा का गेम खत्म समझना गलती होगी। भूत बंगला का राम जी आके भला करेंगे नंबर 13 पर पहुंचा है इस हफ्ते। लेकिन कॉकटेल का जो अपकमिंग गाना है माशूका, वो मैंने सुना है एंड दैट वन साउंड्स फार मोर डेंजरस। लेकिन अभी फ्रॉम एन ईरा व्हेन शाहिद कपूर एंड प्रीतम दा सिंपली कुड नॉट मिस, ये वाला गाना है फ्रॉम मौसम जिसे गाया है शाहिद माल्या ने, रब्बा मैं तो मर गया ओए, माय पिक ऑफ द वीक।

0: बॉलीवुड में बहुत चीजें समझ आती हैं, फ्लॉप फिल्म समझ आती है, फ्लॉप ट्रेलर समझ आता है, लेकिन एक चीज जो जेन्युइनली समझ नहीं आती है, इनफैक्ट शॉकिंग लगती है, वो तब होता है जब धर्मा प्रोडक्शंस का म्यूजिक ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं करता। अभी जो आपने सुना चांद मेरा दिल, वो सच में बहुत अच्छा गाना है। एल्बम भी बुरी नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट सरप्राइजिंगली ठंडा है। और ये बात इसलिए स्ट्रेंज लगती है क्योंकि धर्मा और बॉलीवुड म्यूजिक का रिश्ता सिर्फ सक्सेसफुल नहीं रहा, वो हिस्टोरिक रहा है यार। कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, ये जवानी है दीवानी है, दिल है मुश्किल, कपूर एंड सन्स, टू स्टेट्स, राजी, लिस्ट बहुत लंबी है। एंड ये सिर्फ एल्बम्स नहीं थी, ये लाइफ के स्टेजेस थे, लाइफ के लेसन थे। कॉलेज रोमांस चाहिए तो धर्मा का साउंडट्रैक, शादी में डांस करना है तो धर्मा का साउंडट्रैक, हार्ट ब्रेक हुआ है तो धर्मा का साउंडट्रैक। और इसी बारे में करण जौहर ने भी एक बहुत ही कमाल की बात बोली।
1: I'm really glad that Dharma Productions has a great repertoire of work when it comes to our music. I think it's not that I have a musical mind or I can sing or I can play any instrument. I think because I grew up on the fodder of Hindi film music, it's given me an instinct to decide which song works and which one doesn't. Very honestly, I'm very fortunate that a lot of our music has connected with millions of people across the world and most of our albums have been immensely successful.
0: मैं करण से 100% agree करता हूँ। करण का रियल सुपर पावर डायरेक्शन नहीं है, म्यूजिक को पहचानने का इंस्टिंक्ट है, वो गट फीलिंग है, वो समझते हैं कौन सा गाना लोगों के इमोशंस में घुसेगा। तो फिर सवाल ये है, क्या ऑडियंस का टेस्ट इतनी जल्दी चेंज हो रहा है?

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
1: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
0: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
1: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
0: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: वो नहीं, ये वो टाइप का गाना है जिसका फ्यूचर चार्ट्स पे डिसाइड नहीं होगा, टाइम डिसाइड करेगा। और सच कहूं तो मुझे पूरा यकीन है कि इस हफ्ते बहुत लोगों ने ये गाना स्किप तक कर दिया होगा, क्योंकि हम ऑडियंस अब पेशेंस खो चुके हैं। एक्चुअली पेशेंस नहीं, हम टेस्ट खो चुके हैं। हम म्यूजिक को कंज्यूम करते करते करप्ट हो गए हैं। हमें इंस्टेंटली हुक चाहिए, हमें बीट चाहिए, ड्रॉप चाहिए, रील वाला मोमेंट चाहिए। और अगर गाना 15 सेकंड में हमें डोपामीन हिट नहीं दे रहा है तो हम प्रेस करते हैं नेक्स्ट और फिर बोलते हैं यार रहमान साहब पहले जैसे नहीं रहे। रियली आदमी आज भी ऐसी कॉम्पोजिशंस बना रहा है जिनको समझने के लिए शायद थोड़ा सा इवॉल्व होना पड़ेगा। वो नहीं जैसे गाने को देखो, स्लो बैलेड की तरह शुरू होता है, फिर धीरे से हार्ट ब्रेक में टूटने लगता है, फिर मेलोडी शिफ्ट हो जाती है और एंड इट्स प्योर सूफी ट्रांसेंडेंस। और उस पूरी जर्नी में आदित्य आर्के की आवाज, यार क्या वल्नरेबिलिटी है। दिस इज नॉट प्लेलिस्ट म्यूजिक, दिस इज अकेले बैठो और फील करो वाला म्यूजिक। और इसी बारे में इम्तियाज अली ने रहमान साहब को लेकर एक ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन बताई थी।
1: क्यों ऐसा होता है कि कोई भी गाना आप सुन ले यार रहमान का, ऐसा नहीं है कि उसमें उन्होंने कोई यूनिक चीज नहीं की हो। हर गाने में कोई ना कोई नई चीज जरूर होती है। कोई भी गाना आप नहीं कह सकते कि यार इसमें कोई खास बात नहीं, हर गाना रहमान साहब का। मगर एक बात है, ही नेवर लाइज। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज क्वालिटी अबाउट ए आर रहमान। वो कभी ना जो भी कुछ कहते हैं ना वो सच में कहते हैं, वो सच ही होता है उनके लिए। उस जेन्युइननेस की वजह से भी कुछ शायद ऐसा होता है कि कभी वो बगैर जेन्युइनिटी के कोई काम नहीं करते, तो शायद वो चीज भी ट्रांसलेट जरूर होती ही होगी।
0: दैट लाइन हिट मी हार्ड कि रहमान साहब कभी झूठ नहीं बोलते। मे बी इसलिए उनका म्यूजिक हर किसी को इंस्टेंटली समझ नहीं आता। सच को प्रोसेस करने में थोड़ा वक्त लगता है। और आयरनी ये है, इसी काउंटडाउन पे धुरंधर का मैं और तू गाना है, विच इज ऑन नंबर 9। इट्स गॉट एन इजी वाइब, इट्स एनर्जेटिक, इट्स इंस्टेंटली कैची। एंड फिर नंबर 8 पर है व्याह करवा दो जी, मिक्का सिंह और आशीष कौर की आवाज में। फुल एनर्जी, फुल शादी वाला मोड। क्या लोग नाचेंगे? 100%। लेकिन क्या 3 महीने बाद ये गाना याद रहेगा? आई डोंट थिंक सो। और वही डिफरेंस होता है पॉपुलर म्यूजिक और टाइमलेस म्यूजिक में। गाना नंबर 8 इस हफ्ते, ब्याह करवा दो जी, जब है जवानी तो इश्क होना है। नंबर 9।

सैयारा इज वन ऑफ द हाईएस्ट वॉच्ड मूवीज ऑन नेटफ्लिक्स और इसी हफ्ते मैंने नेटफ्लिक्स पे एक और फिल्म देखी, कर्तव्य. And I genuinely did not expect it. Saif Ali Khan इस फिल्म में outstanding है यार. सच ये है कि बॉलीवुड में कुछ एक्टर्स हैं जिनको देख के लगता है कि शायद इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ऑटो तक नहीं लिया होगा. और फिर वही बंदा जब एक देसी यूपी बिहार का पुलिस वाला बनके स्क्रीन पे आता है और आप उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका ठहराव, उसकी आंखों की थकान बिलीव कर लेते हो ना, वो होती है एक्टिंग. और सैफ ने ये बार बार किया है. ओमकारा हो गई, लाल कप्तान, बीइंग साइरस. बंदा रिस्क लेता है और फेल भी होता है कभी कभी, लेकिन सैफ नेवर प्लेज इट सेफ. एंड सैफ के साथ हैं संजय मिश्रा. यार क्या एक्टर है. वो एक्टिंग कहां करते हैं एक्चुअली, वो तो बस हैं. ऐसे लोग परफॉर्म नहीं करते, वो हवा बदल देते हैं. एंड फिर इस पिक्चर में देखे सौरभ द्विवेदी, वही अपने लल्लन टॉप वाले. और इंटरनेट ने भाई साहब उन्हें ऐसे तोड़ा है ना, जैसे वाइवा लेने वाले प्रोफेसर को अचानक एनुअल डे पे नाचने के लिए बोल दिया हो. देखिए क्रिटिसिज्म देना आसान है, इनफैक्ट बहुत आसान, हम सब करते हैं, मैं भी करता हूँ. लेकिन फिर खुद कैमरा के सामने आके ऐसे परफॉर्म करना जैसे स्कूल असेंबली में लास्ट मिनट पे किसी बच्चे को रोल करने के लिए बोल दिया हो, वो डेंजरस गेम है. सोशल मीडिया इसीलिए इतना रूथलेस है क्योंकि ऑडियंस हिपोक्रेसी को इंस्टेंटली पकड़ लेती है. और ये जरूरी भी था, फिल्म को क्रिटिसाइज करना और खुद एक्टिंग करने में वही डिफरेंस है जो एक पॉडकास्ट में बैठ के क्रिकेट के बारे में बात करना है और एक 150 किलोमीटर प्रति घंटे की बाउंसर को फेस करना है. लेकिन यस, इन स्पाइट ऑफ सौरभ द्विवेदी, प्लीज वॉच दिस फिल्म कर्तव्य फॉर सैफ अली खान एंड संजय मिश्रा. इसी बहाने एक अच्छा गाना सुनाने का भी मौका मिल गया है. सैफ की एक ऐसी परफॉर्मेंस जिसने जेन्युइनली ऑडियंस को शॉक किया. इट वाज कोल्ड, इट वाज मेनेसिंग, इट वाज अनप्रेडिक्टेबल. ये अब भी मेरी फेवरेट फिल्म है. ओमकारा से ये गाना है नमक, रेखा भारद्वाज जी की आवाज में. टॉप 20 रिवाइंड.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो
2: सुमन जी गुड इवनिंग इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ आपका नेट काम नहीं कर रहा था आपने कंप्लेंट करी है
1: हाँ जी हाँ जी
2: आप अभी इंटरनेट के पास हैं कंप्यूटर के पास हैं
1: एक सेकंड आप प्लीज होल्ड करेंगे मैं
2: होल्ड कर रहा हूँ
1: हाँ जी हेलो
2: क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप
1: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है
2: कनेक्ट नहीं हो पाता है सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ
1: सुमन शर्मा दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है बस इसमें गूगल खुल जाता है तो स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें
2: वो सारी चीजें हो जाएगी आप सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ फुल एड्रेस
1: इंटरनेट चलता नहीं है ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा
2: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको
1: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों
2: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना इसलिए हम वही मतलब कंफर्म
1: मेरा सनशाइन कैंसर है प्रॉब्लम क्यों हो रही है मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला
2: वो ठीक हो जाएगा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकता हूँ मैडम
1: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
2: मैडम ये इंटरनेट का कनेक्शन है आप मेरे को क्यों बता रहे हो ब्लड ग्रुप बताइए
1: बी पॉजिटिव दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है बाकी तो चला ही नहीं
2: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ
1: राहुल शर्मा ये ठीक कैसे होगा मुझे बता
2: तो
1: दो
2: तो मैं आपको अरे मैडम
1: आप डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए डिटेल
2: सुमन जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे मैं सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं
1: क्या
2: नहीं तो मैं अरे मैडम आप मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है आप अगर मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
3: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा आपका मुर्गा बन गया रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ कभी मुर्गा बने इससे पहले आप
2: दोबारा कॉल करेंगे आपका वक्त लिया आप बड़े अच्छे हैं मैं अभी आपको कॉल बैक
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: गोल्ड प्राइसेस आर राइजिंग इन्वेस्ट इन प्योर गोल्ड बार्स विद राज जूल्स
6: वी हैव अ रेडी स्टॉक एट राज जूल्स बाय गोल्ड बार्स नाउ एट राज जूल्स
7: ओह नो
8: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप 1213 न्यू जर्सी 27 सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप 700 हैरिस एव मिडिलसेक्स इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर यू आर इन गुड हैंड्स
9: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2
10: वाओ यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज
10: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन
12: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
13: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
14: Tera kya hoga, Kalia?
15: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
14: Ab, mirchi kha.
16: Radio Mirchi, it's hot.
0: Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 5.

0: कभी कभी एक फिल्म खत्म होने के बाद भी वो खत्म नहीं होती। धुरंधर और धुरंधर 2 एग्जैक्टली वैसी ही फिल्म्स निकली। सिर्फ बॉक्स ऑफिस सक्सेस नहीं, कल्चरल टेकओवर किया, मीम्स आए, फैन एडिट्स आए, एक्शन सीन्स वायरल हुए। लेकिन सबसे डेंजरस चीज पता है क्या हुई? डायलॉग्स जो है वो हमारे दिलो दिमाग में घुस गए। और ऑनेस्टली बॉलीवुड को इसकी सख्त जरूरत है, क्योंकि आजकल हम देखो फिल्म्स देखते तो बहुत हैं, लेकिन याद हमें बहुत कम रहती हैं। क्योंकि एक वक्त था जब हिंदी सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता था, रोजमर्रा की भाषा हुआ करती थी। कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तुमसे ना हो पाएगा। ये लाइन से स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं थी, ये इंडिया का पॉप कल्चर सॉफ्टवेयर थी। लेकिन आज हजार करोड़ की फिल्में आ रही हैं, लेकिन थिएटर से बाहर निकलते ही आधे से ज्यादा डायलॉग्स मेमोरी से लॉग आउट कर जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि या तो फिल्म्स रियलिज्म में इतनी धीमी हो गई हैं कि कोई लाइन हवा नहीं पकड़ती, या फिर हर दूसरा डायलॉग एक मास मोमेंट बनने की इतनी कोशिश करता है कि असली स्वैग गायब हो जाता है। आइकॉनिक डायलॉग्स लिखे नहीं जाते यार, वो फील होते हैं। और धुरंधर ने हमें याद दिलाया कि बॉलीवुड जब डायलॉग बाजी सही करता है ना, तो ऑडियंस सिर्फ तालियां नहीं बजाती, वो डायलॉग्स घर ले जाती है। इस हफ्ते का गाना नंबर 4 इज ऑल्सो अ धुरंधर।
1: नंबर 4।

लेकिन अब एक स्पेशल गाना, एक ऐसी फिल्म से जिसके डायलॉग्स लिटरली इंडियन पॉप कल्चर की परमानेंट प्रॉपर्टी बन चुके हैं। फ्रॉम जब वी मेट, कोई डाउट मत रखना दिल में, सिखनी है ये भटिंडा की।

भी दसदा ने सिर्फ चार्ट्स क्लाइंब नहीं किए, ऑनेस्टली उसने अक्षय कुमार के बॉक्स ऑफिस कॉन्फिडेंस को CPR दे दिया है। लेकिन इस वक्त बॉलीवुड का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर कॉन्वर्सेशंस थिएटर्स में नहीं, टेलीग्राम ग्रुप्स में चल रहा है। धुरंधर 2 द रिवेंज द सेकंड पार्ट, बेसिकली इंडिया में इसके OTT रिलीज का वेट इतना इंटेंस था ना कि लोग लिटरली काउंट डाउन कर रहे थे। प्रॉब्लम ये थी कि फिल्म पहले एक प्लेटफॉर्म पे आनी थी और फिर 2 हफ्ते बाद दूसरे प्लेटफॉर्म पे आनी थी, और इन दोनों OTT प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शंस भाई EMI लगने लगे थे। और फिर बीच में मेकर्स ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, फिल्म को इंटरनेशनली रिलीज कर दिया 14 मई को। बस गेम ओवर, क्योंकि बॉलीवुड अभी तक ये बात समझ नहीं पाया है कि इंटरनेट को ज्योग्राफी समझ नहीं आती। अगर आपकी फिल्म दुनिया के किसी भी कोने में अगर एक बार किसी OTT प्लेटफॉर्म पे आ गई तो 2 घंटे में वो पायरेटेड वेबसाइट्स पर भी आ जाती है, और वो भी कोई 240 पिक्सल वो सिनेमा हॉल वाला प्रिंट वाली क्वालिटी नहीं, जिसमें बीच में किसी की परछाई नजर आती है, पिक्चर हिलरी होती है या साउंड बिल्कुल बकवास होता है। आई एम टॉकिंग ऑफ प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर 4K फाइल। अब तो सोशल मीडिया पे लोग रिव्यूज से ज्यादा लिंक्स एक्सचेंज कर रहे हैं। पहले लोग पूछते थे कि भाई स्टोरी कैसी है, अब लोग पूछ रहे हैं भाई लिंक है क्या तेरे पास। और ये बहुत ही डेंजरस साइन है, क्योंकि एक वक्त था जब पायरेसी कन्वीनियंस की वजह से होती थी, आज पायरेसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से हो रही है। ऑडियंस फिल्म देखना तो चाहती है, इनफैक्ट इमीडिएटली देखना चाहती है, लेकिन अफोर्डेबल तरीके से देखना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब फिल्म देखने के लिए एक आदमी को 3 apps, 4 passwords, 5 subscriptions और 15-20 एड से गुजरना पड़ता है। और इसीलिए पायरेसी फिर से एक डरावना कमबैक कर रही है। और आयरनी देखो ना, जिस फिल्म को लोग इलीगली हंट कर रहे हैं उसी फिल्म का गाना 14 हफ्तों से इंडिया का नंबर 1 गाना बना हुआ है, फ्रॉम धुरंधर शरारत। और ये शरारत सच में महंगी पड़ गई। नंबर 1।

0: The Mania is still on, but Shararat बाकी गानों से ज्यादा पॉपुलर निकलेगा ये कभी नहीं सोचा था। एक और टाइटल ट्रैक है इश्क चला कर है, गहरा हुआ आरी आरी, इनको सुन के लगा था कि ये शायद आगे निकल जाएंगे, बट नो शरारत इट इज बढ़े या मेरी थोड़ी ना चलती है। इट इज यू एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम मिर्ची टॉप 20 के एक नए एपिसोड के साथ। अंटिल देन सरेन ओवर एंड आउट।
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: It's 7:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels, diamond jewelry ki first choice. RK Jewels, best quality, best price.
3: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com. बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है. फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत है, पर बच्चन एक ही होता है.
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
2: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है.
2: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका इस्तकबाल करता है आपके ताशी, और आज एक बड़ा खूबसूरत शेर मिला जिससे इस महफिल की बैठक की शुरुआत करना चाहूंगा मैं। और आपने वो गाना सुनाई है अगर तुम साथ हो, और उसमें एक लाइन आती है जिसमें वो कहते हैं कि तुम पास हो या ना हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है। उसी पे मैं आपको उबैदुल्ला अलीम साहब का, क्योंकि ख्याल वही है जमीन अलग है, उबैदुल्ला अलीम साहब का एक शेर सुनाना चाहूंगा जो कहते हैं कि मैं तन्हा था मैं तन्हा हूं, आय हाय, मैं तन्हा था मैं तन्हा हूं, तुम आओ तो क्या ना आओ तो क्या। क्योंकि यार इंसान का जो लोनलीनेस होती है ना, इंसान का जो अकेले रहने का, आइसोलेट करने का जो एक जो फितरत होती है उसकी, वो उसके अंदर से होती है। वो एक झुंड में भी होगा, वो किसी पार्टी में भी होगा, लेकिन अगर वो दिमाग से अकेला है, अगर वो दिमाग से आइसोलेटेड है ना, तो वो आइसोलेटेड ही रहेगा। मैं तन्हा था मैं तन्हा हूं, तुम आओ तो क्या ना आओ तो क्या। देखिए आने जाने के वादे तो हम नहीं करते, लेकिन एक से बढ़कर एक गजलें नगमे नज़में लाइन से लगा रखी है आपके लिए। स्टेडियम मिर्ची महफिल, आपके ताशी है आपके साथ। आदाब, इट्स हॉट।